0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
2: प्रकृति संग खुशियों की लहर।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर आया है सुरक्षित मातृत्व और हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बेहतरीन सुविधा। डॉक्टर सुदीप कौर स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ के साथ यहां मिलता है एडवांस लेबर रूम, NICU, ICU, हाई BP, शुगर, हार्ट, किडनी प्रॉब्लम वाली प्रेगनेंसी का सफल इलाज, साथ ही ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी की विशेषज्ञ सलाह, IUI से लेकर हर सुविधा और 24/7 ब्लड बैंक भी उपलब्ध है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
2: जन जन तक पहुंचा संदेश।
3: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, PM किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: सुबह तक का टाइम है,
3: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
4: तेरे को शर्म नहीं आई माँ के कंगन गिरवी रखते हुए?
3: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
5: और मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
6: रुको रुको बेटा।
5: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
6: क्या हुआ बेटा?
5: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया, बाबा जी मैं हार गया।
6: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
7: श्याम जी?
6: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: और बाबा बाबा जी बाबा जी भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जनाब आपको यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: पाँच छह

0: भाई कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे।
0: चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ।
2: आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु

0: गति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रूपये तक की मांग की जा रही है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी न हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: वी विल इंश्योर दैट द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन अ फ्लॉलेस मैनर।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम वाले और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए छाऊ बांध परियोजना के आने पर सहमति व्यक्त की। पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोबारा लखनऊ में तीन मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avignon, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Tishau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life. Highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia, Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership.

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी, वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन कर लिया है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है और आप सभी का इस्तकबाल करते हैं इस खूबसूरत सी सुबह में, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ, और ये है एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग। दिस इज वेंसडे की सुबह। बिल्कुल श्रोताओं, अब स्टेशन की घड़ी में वक्त हो गया है 8:22 और आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। जब भी हम रेडियो पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातचीत करने आते हैं, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और आज की सुबह भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, ढेर सारी बातें हैं और बहुत सारा गीत संगीत जो आपकी सुबह को और भी औसम बना देगा। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, वेरी गुड मॉर्निंग। बस आज की सुबह इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं बस फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ उस काम में लग जाइए, अपना 100% दीजिए, यकीन मानिए वो काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। बस हाँ, ऊपर वाले पे बिलीव रखिए और अपने आप पे भी बिलीव रखिए, अपने काम पे जरा सा फोकस करिए। जब आप फोकस करेंगे तो आपका काम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन। बस यही कहना चाहते हैं कि उठाइए अपने कर्मों की किताब और लिख डालिए कुछ बेहतर से बेहतरीन। एक बेहतरीन ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर, सोनू निगम साहब की आवाज। इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और करेंगे आज का बहुत ही बढ़िया सा आपका वेलकम, आपका वार्म वेलकम करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वेंसडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के साथ। 3, 2, 1, गो।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय।
0: बिंदास मॉर्निंग सुनिए, बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

बेहतरीन गाना सुबह सुबह आपने सुना आरजे आनंद के साथ। क्या बात है यार, ऐसे खूबसूरत गाने सुन के सच में सुबह खूबसूरत हो जाती है ना जी। कैसे हालचाल है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। ढेर सारे संदेश आप लोगों के पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 8:36 हो गए स्टेशन क्लॉक में। 17 जून की सुबह बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग है और ढेर सारे आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप जहां भी जा रहे हैं बस पॉजिटिविटी के साथ जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब अच्छी यू नो वाइब लेके आप घर से बाहर निकलते हो, कुछ अच्छा सोच के घर से बाहर निकलते हो, तो यकीन मानिए आधा काम आपका मतलब अच्छा सोचने से कंप्लीट हो जाता है। तो पॉजिटिविटी में बहुत पावर है, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है। अच्छा सोचिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। हमारा तो मोटिव ही यही है कि भैया जितना आप अच्छा लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ में, उतने अच्छे रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेंगे। तो बस अच्छा सोचते रहिए और बाकी लाइफ में ऐसे ही अच्छे एंजॉय वाले यू नो जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छी मेमोरी बनाते चलिए, क्योंकि जिंदगी में मेमोरी बनाना बहुत जरूरी है। कुछ अच्छी थॉट्स हैं, कुछ अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात है आपके पास, तो डेफिनेटली आप उनको हम तक पहुंचा सकते हैं मैसेज के माध्यम से 9837896896 पर। ठीक है जी, व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। और आपको तो पता है हमारे स्टेशन पर एक शो चलता है जिसमें हम आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन जो है देते हैं, कौन से शहर में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या स्पेशल खाने पीने को मिलेगा, कौन सी चीजें वहां की फेमस हैं, क्या चीजें हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं, वो सारी चीजें हम आपको अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए बता रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं कहां पर, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं अयोध्या नगरी। जी हाँ दोस्तों, तो इसके जरा सी देर में इस खास प्रोग्राम के बाद वापस मैं लौट कर आऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी दिल से दिल तक। तो आप कहीं मत जाइए, अयोध्या अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्या चीजें जो आपको स्पेशल मिलने वाली है जरा ये सुनिए, फिर आपको पता लग जाएगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाती बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती होगी की तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ चारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं तो इतने भक्ति अब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो भाई अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े सी कढ़ा में घंटों तक पकता दूध, धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई की किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही।
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही।
1: ऐसा लगता है जैसे

0: स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
1: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
0: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
1: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
0: दोस्तों, इन व्यंजनों लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
0: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
0: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
1: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
0: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
1: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
1: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
1: रामलला के दर्शन कीजिए,
0: सरयू आरती का आनंद लीजिए
1: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
0: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
1: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
2: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: वेलकम बैक है। ढेर सारे मैसेज आपके आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू इन मैसेजेस के लिए, हम जरूर आपके मैसेज को पढ़ेंगे। रणवीर जी मुरादाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं रणवीर जी, लिखते हैं मेरी रब से दुआ है और इतना ही कहेंगे कि FM सुनने वालों का दामन कभी ना छूटे और खुशियों से भरा रहे। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद जी। रिहाना जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। विक्की सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज की सुबह। और भी ढेर सारे श्रोता हमें मैसेज कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके संदेश को शामिल करेंगे। 8:56 हो गए, लौट कर आएंगे तो बताएंगे आज का दिन क्यों खास है, आज के दिन क्या कुछ खास रहा इतिहास के पन्नों में, उस पर एक नजर डालेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक अच्छा सा गीत और निकाल रहे हैं आपके लिए, इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज के दिन के बारे में। तो आप बस ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए, कुछ आप भी कहना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं 9837896896 पर जुड़िए हमारे साथ। इंतजार है हमें आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल ट्रैक, इस गाने के बाद जल्दी से लौट कर आएंगे स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: राजश्री से जुड़े रहने के लिए
2: 6543

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
8: क्या मेरी कसम
7: मिस कर दिया तो रीलोड।
9: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

हेलो हेलो, वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हालचाल है? मॉर्निंग आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। मेरा नाम आरजे आनंद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेशन क्लॉक में 9:03 हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रांड न्यू मॉर्निंग, 17 जून 2026 यानी 17 जून की सुबह है। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। सूरज चाचू निकल चुके हैं एकदम फुल ऑन लालिमा के साथ। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है भैया आज भी, तो ऐसे में आपने अपना जरा ध्यान रखना है अच्छे से। अभी वेदर क्या कहता है एक नजर फटाफट से डालेंगे। 31 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है जो टेम्परेचर है करंट, एंड आगे चल के ये 37 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हवाएं 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। ह्यूमिडिटी 60% दिखा रहा है। एयर क्वालिटी आज थोड़ी बेटर दिखाई जा रही है। विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है। सो सब कुछ ऑसम रहने वाला है, लेकिन गर्मी आपको थोड़ी बहुत दोपहर के बाद डेफिनेटली ज्यादा लगने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिन है सानी, सब कुछ भी है पानी। हाँ जी, अच्छा, आप नहाने जा रहे हो, चलो अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ आज 17 जून को क्या स्पेशल है, यानी कि आज 17 जून को क्या कुछ खास रहा है, क्या तारीख जो है ये आज की तारीख क्यों स्पेशल है और आज 17 जून को क्यों खास बनाया जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, बिकॉज हर दिन का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल

आती है इसी के माध्यम से। आपको बता दें सन 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बता दें सन 2012 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन जो है वो बनी थी आज ही के दिन। एंड आज के दिन जो है अमृता राव जो हिंदी अभिनेत्री, हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री है, बहुत ही खूबसूरत, 1981 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन श्रोताओं। और एक और बहुत ही पॉपुलर निर्देशक एंड अभिनेता है जिनका आज जन्म हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हैं ये भी, इनके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। एंड इसके अलावा एक और खास ब्यूटीफुल पर्सनालिटी का हम बर्थडे मनाते हैं, डेफिनेटली उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे सन 1903 में ज्योति प्रसाद अग्रवाल जो असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता रहे, आज के दिन इनका जन्म हुआ। एंड आपको बताते चले आज के दिन पीडीटी आर्य आचार्य जी जो भारत के भूतपूर्व लोक महासभा के महासचिव रहे, 1945 में इनका भी जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ बेहतरीन स्पेशल बातें जो आप तक पहुंच रही हैं। एंड आज और क्या स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है डेफिनेटली आपको बताऊंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, 9:06 हो गए स्टेशन क्लॉक में। एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन सेलिब्रेट होती हैं। एक बहुत ही खास दिन है आज जो मनाया जाता है, जिसके विषय में डेफिनेटली बात करूंगा मैं थोड़ी सी देर में जब यहाँ पर लौट कर आऊंगा तो। एंड आपके जो संदेश आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल मैसेजेस, हर दिन की सुबह बहुत ही अल्टीमेट बना देते हो आप, इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो यार, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव मुरादाबादी।

आपको वैसे पता होना चाहिए कि 21 जून को योगा डे है, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे है, 21 जून को जो है फादर डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। यस, और फादर्स डे मतलब अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट डे। पापा को प्यार तो हर कोई करता है यार, अपने मम्मी पापा से तो हर किसी को प्यार होता है ना। ये फादर्स डे जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है 21 जून को। क्या स्पेशल रहेगा इस फादर्स डे, डेफिनेटली आपको पता लगेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप बस ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ, फिलहाल कुछ अच्छे गाने, उसके बाद वी कम बैक इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं नहीं जाएंगे, रेडियो की सुई को बिल्कुल नहीं घुमाएंगे और अपना साथ ऐसे ही आनंद के साथ बनाए रखेंगे। आज मैंने बहुत ही बेहतरीन एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे अपलोड की है, सो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक आउट। रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे, प्लीज जाके चेक करो। अभी के लिए राइट हियर झूम बराबर झूम का वो गाना जिसने हम सभी को अपना दीवाना बना दिया था। बहुत ही अल्टीमेट एंड माइंड ब्लोइंग ट्रैक निकाल रहा हूँ आज की सुबह। आई डोंट नो कितने लोगों ने मूवी देखी है, मुझे नहीं पता, देखी या नहीं देखी आई डोंट नो सीरियसली, बट गाना एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग है। इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, फ्लैश बैक में ले जाएगा गाना अभिषेक बच्चन, यू थिंक अबाउट लारा दत्ता। बहुत ही अच्छा ट्रैक है यार। नीरज श्रीधर, अलीशा चुनाई की आवाज, एंजॉय करेंगे इसी गाने को आप मेरे साथ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

वो गाना है आतिफ असलम साहब का, विवेक ओब्रॉय पर पिक्चराइजेशन था इस गाने का। इतना अल्टीमेट ट्रैक है ना ये गाना, मतलब यू नो फ्लैश बैक में ले जाने वाले गाना, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे हैं। कसम से ये गाने सुन के तो कसम से ना एकदम फ्लैश वाली फीलिंग यू नो आ गई होगी आपको भी और मुझे भी। कसम से यार इतना बेहतरीन ट्रैक है तो ऑफकोर्स यार फ्लैश बैक में तो लेके जाएगा ही ये गाना, इतना बेहतरीन जो है। चलो इस गाने को साथ में सुन लेते हैं। एंड आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 RJ आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन,

एक बेहतरीन गाना इसके बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पर आरजे आनंद को, जहां मेरी और आपकी बातें हो रही हैं बहुत ही जबरदस्त वाली। वेलकम बैक है स्टेशन क्लॉक में, वक्त हुआ है 9:16 लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको बता दें आज का मौसम बताया जा रहा है 17 जून का जो मौसम है वो 10 घंटे के अंदर तब्दील हो सकता है बारिश और आंधी में। यस, मतलब मौसम जो है बदल सकता है ऐसा अभी जस्ट राइट नाउ अपडेट आई है भैया। मौसम विभाग ने बारिश आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है, यानी कि IMD के अलर्ट के मुताबिक आने वाले 10 घंटों के अंदर 16 राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें इस दौरान लोगों को संभल कर रहने की चेतावनी भी जारी की गई है, एंड ये जो है कुछ राज्यों में इनफैक्ट अलर्ट भी जारी किया गया है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर भी शामिल हैं। तो भैया आज बताया जा रहा है कि आज 17 जून को 10 घंटे के अंदर हो सकता है वेदर अचानक से चेंज हो जाए। चलो जी, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और देखते हैं, फिलहाल मौसम कभी भी बदल सकता है बॉस। आप हैं इस वक्त आनंद के साथ, सुन रहे हैं आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। थैंक यू सो मच। हमारे साथ लतिका जी जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, हाउ यू डूइंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आई एम वेरी गुड। एंड एक और मेरे पास मैसेज पहुंच गया है, हाय गुड मॉर्निंग, पूनम बात कर रही हूँ आनंद जी। हाय पूनम जी, गुड मॉर्निंग। ये बसंत बिहार से मुझे मैसेज पहुंच रहा है, और पीतल नगदी से हमारे पास मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी। गुड मॉर्निंग सर, प्रीतम जी का मैसेज भी आ गया है मेरे पास, लिखते हैं, सुबह सुबह आउटस्टैंडिंग गाने सुन के मजा आ जाता है। अरे यू जी, एक मैसेज आया सर, बिग सल्यूट आपको जाता है, इतनी अच्छी बातें आप करते हैं, बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं एंड इतनी जेन्युइनली दिल से कनेक्ट होते हैं, तो यार ऑफ कोर्स ये जो फीलिंग है वो अल्टीमेटली बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। थैंक्स लॉट एवरीबॉडी, आपको ऑल थैंक्स टू माय यू नो ऑल द लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं और इतनी बढ़िया हमारे साथ एक वाइब पूरी सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑल थैंक्स टू आपको यार। व्हाट्सएप ने स्टेटस में किया है एक बड़ा बदलाव, 24 आवर्स के बाद भी सेव रहेगा आपका स्टेटस। एब्सोल्युटली व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आया है, आपको बता दें जो व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब 24 घंटे के बाद जो आपका स्टेटस गायब हो जाता था, जी हाँ, अगर आप उसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख पाएंगे। यूजर्स उनके लिए एक्सक्लूसिवली एक नया फीचर एनरोल होने वाला है व्हाट्सएप में, जिसमें आप जाकर अपने पुराने स्टेटस को देख पाएंगे और उन्हें दोबारा भी लगा पाएंगे। ये फीचर्स जल्द ही आप सभी के व्हाट्सएप पे डेफिनेटली अपडेट के रूप में आ जाएगा। अच्छी बात है यार, ऐसे फीचर ज्यादा रहने चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाज, प्रीतम का म्यूजिक, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम द फिल्म ये दिल है मुश्किल से ये गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ चुके हैं मैं और आप। अभी स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:29 एग्जैक्टली। फुल ट्रैक इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया हुआ है फिर मुरादाबाद 89.6 जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे इतना कहना चाहते हैं कि देखिए आप जहां भी जा रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं या आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं या आप अभी घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, बस यू नो खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को एनर्जेटिक रखिए और बाकी फुल ऑफ एनर्जी के लिए, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के लिए आनंद को ट्यून इन करिए ना यार। मैं आपके लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आता हूँ, जैसे कि अभी कल भैया 25 दिन की छुट्टी के बाद जो है बेसिक स्कूल्स स्टूडेंट के खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल्स में वेलकम हुआ, फूलों की मालाएं उनको पहनाई गई, तिलक लगाए गए, चॉकलेट्स और ट्रॉफी के साथ उनका वार्म वेलकम किया गया। एग्जैक्टली गर्मियों की छुट्टी के बाद फाइनली 25 डेज के बाद जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं वो पुनः खुल गए हैं। पहले दिन स्टूडेंट पहुंचे जहां शिक्षकों के साथ उन्होंने अपने छुट्टियों के दिन को जो सेलिब्रेट किया, एक्सपीरियंस शेयर किए और स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छे से यानी कि अपने एक्सपीरियंस को बताया अपने शिक्षकों को और शिक्षकों ने बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट का वेलकम किया। जो छोटे छोटे बच्चे उनको फूल मालाएं पहनाए, उनको तिलक लगाया, चॉकलेट ट्रॉफी देकर उनके साथ एकदम फुल ऑन वाइब बनाते हुए जो है उनका वार्म वेलकम किया। इनफैक्ट बच्चों ने जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी छुट्टियों के अनुभव भी साझा किए, अपने एक्सपीरियंस अपने टीचर के साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट किए, खुशियां सेलिब्रेट की। और आपको बताते चले जो हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अमित सिंह, उन्होंने बताया कि विद्यालय समय से खुलेंगे और पहले दिन थोड़ी उपस्थिति बच्चों की कम रही, स्टूडेंट की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन अभी आने वाले टाइम में वो संख्या डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट के जो स्कूल्स हैं वो 25 दिन की छुट्टियों के बाद खुल गए हैं कल से एग्जैक्टली। जो बच्चे अब स्कूल्स जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं उनको भी बहुत सारी ऑल द बेस्ट यार, शुभकामनाएं। बिकॉज जब हम छुट्टी के बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम एक छुट्टी के बाद जब हम स्कूल जा रहे होते हैं उसकी वाइब ही अलग होती है, है ना। छुट्टी के बाद जब स्कूल जाते हो तो नया क्लास, नई बेंच, नए फ्रेंड्स एंड यू नो नए टीचर, आपकी क्लास टीचर मॉनिटर सारे लोग चेंज हो जाते हैं, पूरा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है यार, बहुत मजा आता है। लेकिन जब आप छुट्टी के बाद स्कूल जा रहे होते हो तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ही अल्टीमेट होती है वो you know, एक हैपनिंग वाइब होती है, बहुत ही खुशी वाला जो एक माहौल होता है उसकी बात ही अलग होती है यार। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी जो लोग अभी मुझे मुरादाबाद के बाहर सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यारे प्यारे संदेश आप लोगों ने पहुंचाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताया जा रहा है कि हवाई सफ़र सस्ता हो सकता है, एयर इंडिया ने बदला अपना टिकट का पूरा सिस्टम। ओके तो भैया देखिए अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं जाने जूने का, कहीं आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार आप चेकआउट कीजिए, हो सकता है आपको आपकी वो वाले ऑफर मिल जाए जो जिनका वेट कर रहे थे बेसिकली। और अभी हमारे पास एक क्वेश्चन होने वाला है जिसका आंसर डेफिनेटली आप जो है हमें पहुंचाएंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, ऑफ कोर्स बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दो फिल्में जिनके 25 साल के सफर पूरे हो चुके हैं और एक ही दिन ये दोनों फिल्में रिलीज हुई थी, काफी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है अपने आप में। यस, फर्स्ट गदर एंड सेकेंड लगान, दोनों फिल्में बहुत ही अल्टीमेट थी एंड रिसेंटली इन दोनों फिल्म को 25 ईयर कंप्लीट हुए, यानी कि 25 साल हो गए इन दोनों फिल्मों को रिलीज हुए हुए एंड बहुत ही यू नो एकदम फैबुलस मूवी रही अपने आप में। पर्दे पर इन्होंने यू नो कमाल धमाल मचा दिया एंड अगर मैं बात करूं एक तरफ तारा सिंह वो एक आइकॉनिक डायलॉग हैंडपंप उखाड़ने वाला काफी पॉपुलर था सानी पाजी का, यू नो गदर पिक्चर के अंदर देखने लायक था वो सीन। एंड वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं लगान फिल्म की तो ये भी अपने आप में बहुत ही फैंटास्टिक मूवी रही, आमिर खान साहब ने बहुत ही अच्छे से यू नो इस मूवी को कह सकते हैं इस किरदार को निभाया, इस मूवी को शानदार बनाया अपनी एक्टिंग के दम पे एंड दोनों फिल्में बहुत ही कल्ट क्लासी रही, बहुत ही अल्टीमेट मूवी रही। 25 ईयर कंप्लीट हुए इन दोनों फिल्मों को, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड आई होप आपको भी ये फिल्में डेफिनेटली पसंद आई होंगी। गदर एंड लगान दोनों ही अल्टीमेट मूवी है अपने आप में और बहुत ही बेहतरीन इन मूवीज के गाने रहे और फिल्में भी बहुत ही यू नो बढ़िया थी, स्टोरी बहुत अच्छी थी, क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, गाने बहुत ही सुपर हिट थे इन मूवीज के। तो 25 ईयर कंप्लीट हो गए यार, ऑल द वे बेस्ट। बाकी जो लोग देख रहे हैं यू नो इन फिल्मों को आज भी देखने के शौकीन है उनको भैया अच्छी बात है, आप ज़रूर देखिए। और मैं सच बताऊँ पुरानी जो फिल्में होती है ना उनकी बात ही अलग होती है यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मूवीज़ की बात ही अलग होती है जो पुरानी फिल्में होती है।
आमिर खान साहब की बात हुई और एक ही फिल्म का यानी धूम 3 का एक ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपकी रेडियो सेट पर। बालंग एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। सिद्धार्थ एंचल पर आओ की आवाज में गाना निकल रहा है, प्रीतम का म्यूजिक है, समीर अंजान साहब ने लिखा है इस ट्रैक को। एक हेल्थ अपडेट लेकर आता हूँ फटाफट से, एंड इसके अलावा और क्या चीज़ है मेरे पास जो आपको बतानी है, डेफिनेटली बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्दी से यू गया और यू आया।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
6: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: कौन सी अभिनेत्री है भैया, आपको गेस करके बताना है।
1: जो हाल जा कहे,
0: तो दूसरा चला दो जरा पाजी।
2: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: एक और बजा दो यार, एक और लास्ट।
2: जैसे हवाएं सनम सनम।
0: इन गानों में कौन सी अभिनेत्री है आज इनका बर्थडे है। Yes, आपको मुझे मैसेज करके बताना है। अभी जो गाने सुन रहे हैं आप, ये कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, क्योंकि आज इनका बर्थडे होता है 17 जून को।
1: मिल के दिल का है जो हाल का कहे।
0: क्या बात है, चेंज करो गाना। अरे चेंज करो।
2: अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: कौन सी अभिनेत्री के ऊपर पिक्चराइजेशन है ये गाने, जरा बताओ। आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है भैया। मजे की बात ये कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो लाइफ पार्टनर हैं, वो एक रेडियो जॉकी हैं भैया। एक इंटरव्यू देने गई थी मोहतरमा एक रेडियो स्टेशन में, और वहाँ इनको एक आरजे से प्यार हो गया। हाय हाय, क्या किस्मत थी उस आरजे की यार।
2: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
0: ये गाने कौन सी हीरोइन पर पिक्चराइजेशन है, इनका नाम आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। कौन है ये कमाल की गुड़ी, व्हाट्सएप कर दो यार मुझे 9837896896 पे अपना नाम आप सबसे पहले टाइप करना है आपने, उसके बाद अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहां से आप मुझे सुन रहे हैं। आई नो आप मुझे मुरादाबाद से बाहर भी सुनते हैं, तो आपके शहर का नाम और उसके बाद आपका सही जवाब। अभी जो आपने गाने सुने हैं वो कौन सी अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, आज उनका बर्थडे होता है। यस, आज 17 जून को अगर आपका भी बर्थडे है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट किन के साथ करते हैं। ये कमाल की आइकॉनिक एक्ट्रेस हैं, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही फैबुलस सिंगर जिनका बर्थडे आज हम मनाते हैं, एंड शी इज़ वेरी वेरी अमेजिंग सेलिब्रिटी। आज इनका भी बर्थडे है, एंड ऑफ कोर्स इनका बर्थडे हम विश करेंगे इस बहुत ही आइकॉनिक गाने के साथ। और बहुत ही प्यारी यू नो ये सिंगर हैं, मुरादाबाद में आ चुकी हैं, ओडिशा में ही आई थी, मज़ा आ गया था, मैंने इनका लाइव कॉन्सर्ट इन्जॉय किया था। Yes, I am talking about Sona Mahapatra. आज इनका बर्थडे होता है, वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे पूरे FM entire family की ओर से सोना महापात्रा जी को, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगर आज की तारीख में आपका भी बर्थडे होता है, तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस लीजेंडरी अमेजिंग सिंगर के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गाने को सुनेंगे, लौट कर आता हूँ एक कड़क हेल्थ टिप्स के साथ।

0: क्या बात है यार, देखो गाना बहुत ही अच्छा था। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है छोटी सी, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आपने मेरे को बताना है कि उसमें कौन सी अभिनेत्री हैं, लेकिन बर्थडे जिनका था उनका गाना भी आपने सुन लिया। सोनम महापात्रा का आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, 17 जून है आज, यानी 17 तारीख है, और अमृता राव का बर्थडे कुछ लोगों का कहना है कि निकल चुका है। आनंद जी आप जागो, प्यारे आनंद आप जागो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाग चुके हैं, लेकिन आपको मुझे बताना है आज की सुबह ये कौन सी एक्ट्रेस है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। ये जो गाने चल रहे हैं इन गानों में कौन सी हीरोइन है आप मेरे को ये बताओ यार।
1: शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4 मई।
0: चलो जी चेंज करो।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
2: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: हाँ मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
5: बिंदास मॉर्निंग
2: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: रही फिल्म का गाना भी आपने एंजॉय किया, अंबर सरिया सूना महापात्रा की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का वेंसडे की सुबह में स्वागत है। आज बुधवार का दिन, बुध करेश शुड, बहुत ही स्पेशल मॉर्निंग। 17 जून हो गई यार, पता नहीं चल रहा है ना। वेल 20 जून को हमारा भी एक बहुत ही अच्छा शो होने वाला है, रामगंगा बिहार था एक्चुअली लॉन में, स्पेशली लेडीज के लिए होने वाला है ये शो। तो आप डेफिनेटली इन्वाइटेड है, डेफिनेटली आप आ सकती है। सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप होने वाला है, सो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें वहां पर होने वाली है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप वहां पर आए एंड भरपूर इन्फॉर्मेशन और जो भी चीजें वहां होने वाली है उन सबका लाभ उठाएं। अगर आप टेलीग्राम चलाने के बहुत बड़े शौकीन है तो आपको बता दें भारत में लगाई गई है भैया रोक, 22 जून तक नहीं चला पाएंगे आप टेलीग्राम। इनफैक्ट 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर भी जो है वो बंद रहेगा। एग्जैक्टली अब ये क्यों होने वाला है ये तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल 22 जून तक आप टेलीग्राम अगर चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भैया और आपका नहीं चल पा रहे तो समझ जाइए बॉस की ये बंद हो चुका है। हाँ जी, फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और हमने अभी आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा था इसके ढेर सारे लोगों ने मुझे आंसर्स किए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस पहुंचाए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और जो ट्रेंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, एक चीज़ वो क्या है बताऊँगा अभी आपको। एक बहुत ही महंगा आम जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये आम जो है वो इसलिए वायरल हुआ है क्योंकि इसका भोग लगा है अयोध्या के रामलला भगवान श्री राम को। हाँ जी, मैं आपको बता दूँ अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला को दुनिया का सबसे महंगा आम जो है उसका भोग लगाया गया है, और ये आम काफ़ी पॉपुलर हो रहा है भैया। ये आम जापान की प्रसिद्ध एक ऐसी किस्म का आम है जो बहुत ही महंगा और बहुत ही यू नो पॉपुलर आम है। और इस आम की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो इसके 1 किलो आम की कीमत है 2.5 लाख रुपीज़, यानी कि 3 लाख रुपये के समथिंग ये आम है जिसका भोग जो है भगवान श्री राम को लगाया गया है। अब सोचिए आप यार कितना महंगा होगा ये आम। हाँ चलिए, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप जो है इन प्रोटीन्स को अपने आसपास जरूर रखिए। और प्रोटीन जो है वो आपको कौन कौन सी चीज़ों में मिलने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सफ़ेद तिल, अलसी, कद्दू के बीज, भुना हुआ चना, बादाम, मखाने, मूंगफली, काजू, ये सारे वो मेन प्रोटीन है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको डेफिनेटली अपने डाइट में ज़रूर शामिल करते रहें, या फिर इन सब का आप एक अच्छा सा पाउडर बना के भी, प्रोटीन पाउडर जिसे हम कह सकते हैं वो रख सकते हैं। रिपीट करता हूँ, जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, मखाना, भुना हुआ चना, कद्दू के बीज, अलसी के बीज एंड साथ में सफ़ेद तिल और अलसी को भी इनफैक्ट आप ज़रूर लें। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटीन की पूरी कमी को दूर करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को शामिल करते रहिए। बाकी गर्मियाँ ज़्यादा है तो ऐसे में पानी का सहारा लेते रहिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। स्टेशन क्लॉक में फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं एंड अभी एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। कौन है आज का हमारा लकी कॉलर जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है, क्योंकि आज हमने आपसे पूछा था कि भैया जो गाने चल रहे हैं इनमें कौन सी अभिनेत्री है। अगला गाना चला दें भाई साहब।
1: अभी बाकी है हफ्ते 4 महीने।
0: अच्छा, एक और गाना सुनो।
1: जैसे हवाएं सनन सनन उड़े जैसे,
0: अब तो पहचान जाओगे भाई।
1: करे करे करे करे भुले भुले नए नए करे।
0: अच्छा ये वाला सुनो, तब तो जरूर पकड़ लोगे।
1: है ये तुमको इंतजार में होना।
0: चल झूठी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। यही मैंने आज आपसे पूछा था कि कौन से अभिनेत्री पर पिक्चराइजेशन है, ये गाने जो हैं वो कौन से अभिनेत्री पर फिल्माए हैं, ये आपको मुझे बताना था। विकी सागर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ रहमतनगर छप्पर वाली मस्जिद से। बाबू अंसारी जी भी जुड़ गए हैं आज की मॉर्निंग। अयूब अली रामपुर से जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। मिलन बिहार से आकाश जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे साथ ये विकीश गोयल जुड़ चुके हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है हमारे साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या पहुँचा रहे हैं जरा मैं इसको जूम आउट करके फटाफट आप तक पहुंचाता हूं। एंड इन्होंने ये बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सर ये इन्फॉर्मेशन ना क्लियर नहीं हो पा रही है, इन्होंने कुछ तो हमें पहुंचाया है यहां पर। थैंक यू सो मच ये मैसेज पहुंचाने के लिए, बट अगर आप दोबारा रिपीट करेंगे तो सही रहेगा सर। वेल थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने हमारे साथ यू नो कनेक्ट किया आपने हमें, थैंक्स अ लॉट। आज की सुबह आप जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक मैसेज और मेरे पास पहुंचा है। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? यार मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।

वकील जी, आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी शेयर की है, एंड अगर आप मुझे ये पीडीएफ दोबारा शेयर करेंगे तो शायद हमारे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा इसको आगे तक डिलीवर करने में। थैंक यू सो मच गाइज। लौट कर आते हैं, उसके बाद आपके मैसेज को शामिल करेंगे, कोई एक लकी कॉलर को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे 10:03 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते जाइए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

क्या बात है यार। फिलहाल अब आरजे आनंद आपसे लेता है जाने की इजाजत, क्योंकि समय मुझे और अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करें। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, जोरदार तालियां। सबने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेंट्स अपना जो है दिया, 100% आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक्स लॉट यार, थैंक यू वेरी मच। और हमारे पास सही जवाब सबसे पहले आया था मुजफ्फरनगर से, सुभाष सैनी जी हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच। एंड डीके अरोड़ा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड साथ में हमारे साथ नासिर हुसैन साहब जुड़े, मतलब इन लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, एंड दिस इज राइट आंसर अमृता राव। एंड यहाँ पर नासिर साहब लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद, आई होप यू आर डूइंग वेल, एब्सोल्युटली योर शो इज गोइंग वेरी वेल, and the information and health tips you are sharing are very very helpful, thank you so much, your words, you are always positive and engaging, yaar I will try ki hum apna 100% deke jaye, thank you so much. Well, by the way, sharing your beautiful note and beautiful positivity, ye jo code aapne share kiya hai, thank you so much Mr. Nasir, I am super glad yaar, thank you very much. Gali number 1 se Karula Muradabad se jude the Nasir Hussain, and thank you so much, such a beautiful message, I am very very happy, made my day, thank you so much yaar, itna amazing दिन बनाने के लिए, वंस अगेन थैंक यू। चलिए गाइज अब मैं लेता हूं जाने की इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, सब लोगों ने अपना 100% दिया, सब लोगों ने जवाब दिए हैं, सभी को हम विनर तो नहीं बना सकते, लेकिन आप लोग तो हमारे गोल्डन स्टार हो यार, बाकी अगर सिल्वर हैं तो आप गोल्डन हो। ये जयंतीपुर से समीर अब्बासी जुड़े थे राइट आंसर के साथ, एंड रिहाना सही जवाब के साथ जुड़ी थी, अलका वर्मा जी जुड़ी थी सही जवाब के साथ, हाय गुड मॉर्निंग, हेलो, आई होप यू आप अच्छे होंगे आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज सुनकर बहुत मजा आ जाता है, मैंने रात आपको एक शॉप पर देखा था, ऑलराइट हो सकता है मैम शॉपिंग करने गए हो। ये भूमि सिंह लाइन पार से जुड़ी है, अमरपाल ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग, एंड और भी ढेर सारे संदेश पहुंचते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े थे यहाँ पर रणवीर सिंह जी, इन्होंने भी हमारे पास संदेश पहुंचाया है सही जवाब। बीबी राधिका जुड़े हैं साथ में, पवली अंजान, गीता कश्यप हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े हैं, कश्मीर से भी हमारे पास मैसेज पहुंच गया है महराजुद्दीन का, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट एवरीबॉडी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डेफिनेटली आपसे

वेरी सुन मिलते हैं, कल सुबह, कल ही मिलेंगे यार, वेरी सुन, क्या कल टुन लेन टुमारो मॉर्निंग। आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, एंड प्लीज कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। बाय बाय।

0: अदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज वेनेसडे का। तारीख है 17 जून की, समय हुआ है 10:16 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, बुधवार के सुनहरी से सुबह में आपका दिल से स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त खुशी। और कहते हैं ना दोस्तों कि हर नई सुबह हमें दो तोहफे देती है, एक नई उम्मीद और दूसरा खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक नया मौका। इसीलिए बीती हुई बातों का बोझ छोड़ दीजिए, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान से शुरू हुआ है दिन अक्सर खूबसूरत यादों में बदल जाता है। और याद रखिए साथियों, जिंदगी हर दिन एक नई कहानी लिखती है, बस जरूरत है हर सुबह को मुस्कुराकर अपनाने की। जो लोग उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते, मंजिल भी एक दिन उनका साथ जरूर देती है। तो आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, कम शिकायत करेंगे, ज्यादा शुक्रिया कहेंगे, कम चिंता करेंगे, ज्यादा मुस्कुराएंगे। और इसी प्यारी सी थॉट्स के साथ, प्यारी सी सोच के साथ कहते हैं शो की शुरुआत। एंड इस सुहानी सी खूबसूरत सफर में आप भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। एवरीवन, नंबर है 9837898968। और आपका अपना सफर मॉर्निंग मसाला, जहाँ हर सुबह होगी मुस्कान, संगीत और ढेर सारी अच्छी बातों के साथ, एंड कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएंगे और भी ज्यादा अमेजिंग। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं, कहीं से भी अपना एक प्यारा सा मैसेज पहुँचाइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। और आज की सुबह कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आपके लिए चुने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएंगे।

एक ट्रैक मैंने बहुत ही प्यारा से यहाँ पर चुना है फ्रॉम द मूवी रमैया वस्तावैया से, बहुत ही प्यारा सा गाना है। आज की सुबह आप सभी के लिए एंजॉय कीजिएगा।

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
5: क्या सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी आपने अमेजिंग ट्रैक एंजॉय किया दिलादीघर चंडीगढ़ में बादशाह दिलजीत दोसांझ एंड साथ में हर्षदीप कौर। बहुत खूबसूरत आवाजों में प्यारा सा ट्रैक

ट्रैक आपने एंजॉय किया आज की सुबह। आई होप आपने इन ट्रैक पर भी थोड़ा सा आपने डांस तो किया ही होगा, मुझे मालूम है। क्योंकि देखिए श्रोताओं, आपके दिल की बातें ना आरजी खुशी जान जाती है। और टाइम मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, वक्त हुआ है 10:31 राइट नाउ।

दोस्तों आज 17 जून है और आज का दिन हमें एक खूब बहुत ही बड़ा संदेश देता है। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व मरुस्थलकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर धरती पर हरियाली खत्म हो जाए, नदियाँ सूख जाएं और पीने का पानी भी मुश्किल से मिले तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा ना। इसीलिए दोस्तों आज का दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। और दोस्तों हम सभी छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं। सिर्फ लगाएं ही नहीं, उसकी देखभाल भी कीजिए। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझिए, नल खुला ना छोड़ें। एंड बारिश के पानी को सहेजने की कोशिश करें। ज़रूरत ना होने पर लाइट, पंखा और बिजली के उपकरण बंद कर दें। इससे ऊर्जा भी बचेगी और पर्यावरण की भी सुरक्षित, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। अब छोटे बच्चों को भी ये आदतें ज़रूर आप सिखाइए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कई बार क्या करते हैं, फ़ैन को ओपन कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं, लाइट को ऑन कर देते हैं, बल्ब जल रहा है रूम में। और जैसे नहाते वक्त टंकी खोल देते हैं, ब्रश करते वक्त ब्रश कर रहे हैं और टंकी से पानी चल रहा है, नहाने गए तो बाल्टी में पानी ओवर हो गया है लेकिन वो बह जा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये छोटी छोटी सी गुड हैबिट हैं जो बच्चों को मुझे लगता है कि सिखानी चाहिए। क्योंकि छोटे से बच्चों को जब अच्छी आदतें आप सिखाएंगे तभी वो हर चीज़ को समझ पाएंगे। उन्हें बताइए कि पेड़ हमारी सबसे अच्छे दोस्त हैं, पानी जीवन है और प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज के बच्चे अगर प्रकृति से प्यार करना सीखेंगे तो आने वाला कल ज़रूर हरा भरा होगा। याद रखिए दोस्तों, पेड़ लगाना सिर्फ एक काम नहीं, आने वाली पीढ़ियों को जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार देना है।

और यहाँ पर आपकी खूबसूरत संदेश भी आए हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं, झारखंड से हमें मैसेज मिला है यहाँ पर दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, और साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आदाब नमस्कार आरजे जी, आपको आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें मिला है धनोरी तिलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बीबी आलिया यान बाबूजी का, और कहते हैं कि खुशी जी आपका हर पल खुशियों भरा हो। थैंक यू सर, खुशी हमेशा खुश रहती है और कोशिश करती है कि आप सबके चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल लेकर आए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है बट हमें गुड मॉर्निंग विश किया है, एंड लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप मैसेज लिखते हैं तो नाम लिखना भूल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से बाबू अंसारी जी, साथ में इनकी फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, इरशाद अंसारी जी और महराज अंसारी जी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप आज, काफ़ी टाइम के बाद आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप आप अच्छी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सोचा है हमारे बारे में, हम एकदम फिट एंड फाइन हैं। और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं भूमि लाइन पार मुरादाबाद से, तो चलिए दोस्तों आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाएगा, हम लौट कर आते हैं कुछ खूबसूरत गीतों के बाद, और भी आपको जानकारी देंगे एंड कुछ सवाल भी हैं जो आपसे हम मालूम करेंगे। बचाओ आप कहीं मचाइए, यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए और पानी भी पीते रहिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल।

0: कार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ आज और क्या कुछ खास है, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने श्रोताओं को हर चीज से अपडेट रखना बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जानकारियाँ मिलना भी बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना खुशी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मैसेज पहुंचाए आज की सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देखकर, एंड अभी सभी को शामिल भी करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस धूप में खड़े होकर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। उसी तरह हमारे सफाई कर्मी भी हैं जो हर सुबह हमारी गलियों और सड़कों को साफ करके हमें स्वच्छ वातावरण देते हैं। लेकिन आज का दिन खास तौर पर उन सफाई कर्मियों को दिल से सलाम करने का दिन है, जिनकी मेहनत की वजह से हमारा शहर साफ और खूबसूरत दिखता है। जी हाँ साथियों, दोस्तों आज 17 जून को विश्व कचरा सफाई कर्मी दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों को नमस्ते सलाम सल्यूट करने का दिन है, जिनकी वजह से हमारी सुबह एक साफ सुथरी शहर के साथ होती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब सुबह सुबह हमारे सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर निकल चुके होते हैं। धूप हो, बारिश हो या फिर कड़ाके की ठंड, वह बिना रुके हमारी सड़कों को, सोसाइटी को और को एकदम क्लीन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं।

अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपने कभी अपने इलाके के किसी सफाई कर्मी को थैंक यू कहा है? अगर मौका मिले तो क्या आप उन्हें एक मुस्कान और एक थैंक यू ज़रूर कहिएगा? अपने विचार हमें, अपने मैसेज करके हमें बताइएगा, अपने संदेश कि आपने, जो आपके पास आसपास में जो सफाई कर्मचारी आते हैं, क्या कभी आपने उनको वो भरी, लाइक होता है ना कि इवनिंग में 3-4 बजे उनकी ड्यूटी होती है, मॉर्निंग में वो सुबह सुबह आते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उनकी ड्यूटी होती है, एंड उनको आपने थैंक यू बोला है? बताओ बताओ, जो आपके आसपास सोसाइटी को एकदम क्लीन रखते हैं, वातावरण एकदम साफ सुथरा होता है। अगर आपने थैंक यू बोला है तो अच्छी बात है, नहीं बोला है तो कोई बात नहीं। अगर आज आपको कोई सफाई कर्मी मिलते हैं तो उनको दिल से थैंक यू ज़रूर कहिएगा। और हाँ, अभी बहुत गर्मी भी है तो आप पानी की बॉटल भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम होता है। तो ये छोटे छोटे कार्य आप कर सकते हैं लेकिन लाइफ में बहुत काम आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, बिलीव इन कर्मा, जो हम कर्म करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है, और जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो प्रभु तो खुश होते ही हैं। और अपने आप को भी प्राउड होता है खुद पर कि हाँ, हम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज भी आ गए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास ये मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन। ये मैसेज हमें मिला है रामपुर से अयूब जी का। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास रिहाना जी का आया है रानी नांगल से, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये मैसेज पहुंचा रहे हैं आज़ाद नगर करूला मुरादाबाद से शहीद शारिक अली जी, और साथ में इनके फ्रेंड भी हैं इरशाद अंसारी जी, और इन्होंने एक खूबसूरत से ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजी है, ये दिल आशिकाना। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और मैं बस लौट कर आती हूँ एक प्यारे से ट्रैक के उस पार। बट पता है आपको दोस्तों, जब मैं बात करती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं बात ही करती रहूँ, लेकिन फिर मुझे याद भी आता है कि खुशी एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, कुछ म्यूजिकल ब्रेक भी ले लीजिए। तो चलो, अभी कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: जी आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

मॉर्निंग मसाला खुशी आपके साथ है और आपकी सुबह को खुशी का काम है हैपनिंग बनाना। जी हाँ, ढेर सारी खुशियाँ देना आपको। और दोस्तों, अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना ये दिलाशी खाना से, एंड इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें 2-3 श्रोताओं की आई थी। और ऐसा यू नो कभी कभी होता है, लेकिन होते हैं ना कि दोस्तों सेम थिंकिंग मिलना, सेम च्वाइस, और वो भी 3-4 श्रोताओं की। ओहो, आज तो सभी की एक बारी में ही चॉइस पूरी हो गई है। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें रिहाना जी ने भेजी थी, रानी नांगल से। नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमें भेजी थी पूजा जी ने, विकास नगर से। और दोस्तों, अगर पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी ने आपको परेशान कर रखा है ना, तो अब आपके लिए एक राहत की खबर है। जी हाँ, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 17 जून से लेकर 19 जून तक दिल्ली NCR में मौसम सुहाना रहने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं, गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तेज आंधी, बिजली चमकने और कुछ इलाकों में ओलों की भी संभावनाएं हैं। इसलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट देकर ही निकलें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपके शहर में भी अगर आज बारिश दस्तक दे तो बारिश का मजा जरूर लीजिएगा, लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा। आखिर मौसम का असली आनंद तभी है जब आप सुरक्षित हों। तो अभी हमने मौसम की बात की है और बारिश की बात की है, तो एक ठंडा सा आपको गाना भी हम सुनवाएंगे जो आपकी मॉर्निंग को कूल बनाएगा। एंड यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी, और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आदरणीय खुशी दीदी जी को, हमारा प्यार भरा नमस्कार, हम भी आपका रेगुलर शो सुनते हैं और अभी अभी पानी पीकर हम अपने नाम शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहम्मद यासीन अंजान जी, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। थैंक यू सो मच सर अपना संदेश पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का, और ललिता जी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मैम। कहती हैं कि मैम आज बहुत गर्मी है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी और सुनने वाले तमाम श्रोताओं से भी कि इस गर्मी में पानी पीते रहें और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखें। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, इतना लवली मैसेज आपने पहुंचाया है अपने तमाम श्रोताओं के लिए, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रुद्रपुर से उमर शंकर जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, अभी कुछ और भी मैसेज यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी मैं शामिल करूंगी। एंड एक अभी इंटरेस्टिंग सा बहुत ही खूबसूरत से गाने के मैंने प्रॉमिस किया है, तो सुनवाते हैं आपको। और हाँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप भी कोई संदेश हमें पहुँचाना चाहते हैं, कोई ब्यूटीफुल मैसेज आज की सुबह, तो पहुँचा दीजिएगा। नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी खुशी।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।

0: पीछे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।
1: मैं तो देख देख शीशा शर्मंदी फिरूं सो, मैं तो देख देख शीशा शर्मंदी फिरूं सो, देख देख शीशा शर्मंदी फिरूं सो, मैं तो देख देख शीशा।
2: हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हां जी, जो हमारी अभी सुपर गर्ल सुन रही हैं, बहुत शीशा देखकर शर्मा रही हैं, क्या बात है जी। पर बहुत सोहनी लग रही हो तुसी, नो डाउट। और जम के डांस भी किया आपने इस गाने पर। हाँ, इसीलिए मैंने प्ले किया था। मैंने बोला काम इतना सारा करती है हमारी घर की फीमेल्स बुमनिया, एंड उनके लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। और जब हमारी घर की प्यारी सी गर्ल्स, प्यारी सी बुमन हैप्पी होती हैं, तो पूरा घर खुशी से झूम उठता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबका ख्याल रखना खुशी की जिम्मेदारी है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद भी आ रहा होगा। दोस्तों देखिए, गर्मी अपने पूरे शबाब में है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने काम का रखते हैं। तेज धूप और बढ़ते तापमान की वजह से शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी, भरपूर पानी पीते रहें। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना पड़े तो छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जितना हो सके तेज दोपहर की तेज धूप से बचिए। एंड खाने में हल्का, ताज़ा और घर का बना हुआ भोजन ही आप खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ और मौसमी फलों का ताज़ा रस, जी हाँ जूस आप पी सकते हैं। ये शरीर को कूल रखता है और एनर्जी भी देता है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे ना। इसीलिए श्रोताओं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और यहाँ पर कुछ और भी प्यारे प्यारे संदेश आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज आए हैं, ममता जी का मैसेज हमारे पास आया है चंदन नगर से, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय खुशी दी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। और ये मैसेज हमारे पास रितिका का आया है प्रकाश नगर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हाय खुशी जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कार्तिक गुप्ता का मैसेज हमारे पास आया है, कार्तिक हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी फैमिली भी ठीक होंगी। एक मैसेज हमारे पास रिया जी का आया है लाइन पार से, और ये भी गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंजूरी कॉलोनी मुरादाबाद, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं और महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, इनके फ्रेंड्स जो सभी रेडियो सुनते हैं। और अच्छा लगता है जब एक दूसरे का नाम रेडियो पर आता है, दिल खुश हो जाता है ना। एंड ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और कहते हैं कि मैम आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया आपका। कहते हैं कि आप किसी भी ट्रैक में हमें शामिल कर लीजिएगा। श्योर सो, मैंने यहाँ पर कुछ और गाने आप सभी के लिए सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, हेलो खुशी जी, गुड मॉर्निंग, नईमूल अकरम जी का सिरसवा दोराहा से, और ये कहते हैं कि आप बताइएगा कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये कहते हैं कोई आता है पहले, कोई आता है बाद में, हम खोए हुए हैं एफएम मुरादाबाद की याद में। अरे वाह, क्या बात है, सुपर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ में इनकी फ्रेंड्स भी सुन रहे हैं, सखावत एंड नूर जी सुन रहे हैं समय रेडियो की कार्यक्रम। थैंक यू सो मच, आपने अपना संदेश पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया नईमूल अकरम जी। तो चलिए दोस्तों, एंड मैंने यहाँ पर जो गाने की अभी बात कर रहे थे हम, वो प्ले करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस गर्मी में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में, लाइक जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो और टेस्टी भी हो? बताइएगा मुझे, आपको गर्मी में क्या खाना पसंद है जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और जल्दी बन जाता हो? कौन सी ऐसी डिश है बताओ बताओ मुझे जो गर्मी में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? सोच रहे हैं? हाँ चलिए आप सोचिए, हमने आपको सोचने का वक्त दिया है। लेकिन एक फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत से गाना आप यहाँ पर इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आ रही हूँ कुछ खूबसूरत प्यारे से गानों के इस पार। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए और आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गुनगुनाते रहिए। वेरी गुड।

0: जी,
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
0: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
0: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए,

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे खुशी आपके साथ है, आपकी दोस्त। जी हाँ दोस्तों, जो आपको देती है ढेर सारी खुशियाँ। श्रोताओं, मैंने आपसे अभी पूछा था कि आप मुझे बताइए गर्मी में ऐसा कौन सी हेल्दी फूड है, कौन सी ऐसी हेल्दी डिश है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और जल्दी से बन जाती है, खाने में भी हेल्दी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रतीक्षा का मैसेज आया है और ये कहती है, हाय गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग प्रतीक्षा। कहती हैं कि हमें आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैम मुझे बहुत ज़्यादा आपने डिश के बारे में पूछा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी में वेजिटेरियन पोहा सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, खाने में भी हेल्दी होता है और वो पचाने में भी आसान होता है। और ये कहती हैं कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, सुबह के नाश्ते के लिए ये एकदम बढ़िया ऑप्शन है मैम। एंड मैं तो जब भी मुझे लगता है कि सुबह सुबह मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता, तो मैं फटाफट से ग्रीन सब्जियां घर में होती हैं, शिमला मिर्च, कैरेट एंड और इन्होंने क्या क्या बताया है इसमें एड ऑन करने के लिए, बताया है इन्होंने इन्होंने बताया कि मूंगफली और ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, पोषण भी है, गर्मियों में हल्का भी है और पौष्टिक नाश्ता शरीर को दिन भर तरोताज़ा महसूस कराने में भी मदद करता है। तो मैं तो ये डिश मुझे बहुत पसंद है और मैं ये खाती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैम आप भी इस डिश का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसको ज़रूर खाएँ बनाकर। हाँ मैं ज़रूर खाऊँगी, वैसे मैं बना लेती हूँ, झटपट से बन जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। और मुझे ना खीरे और पुदीने का रायता बहुत पसंद है। जी हाँ, ताज़े दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा, पुदीना, भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा काला नमक मिलाएं, ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप भी खीरे और पुदीने का रायता खा सकते हैं। सुन के मुँह में पानी आ गया है ना। हाँ हाँ हाँ, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, आप भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है।

और हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, उनको भी मैं क्विकली शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, आपको भी जय श्री राम। ये मैसेज पहुँचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से।

नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं रणवीर जी का मुरादाबाद से। ये गुड मॉर्निंग खुशी जी पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने कहा है कि ए मेरे रब, मेरी दुआओं में असर इतना रहे, एफएम मुरादाबाद सुनने वालों का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अरे वाह, क्या बात है रणवीर जी, आप तो छा गए, कमाल ही कर दिया आपने। हाँ, इतनी प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमारे पास आया है काशी नगरी बनारस से मोहसिन अंसारी जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, पूरा होते ही उनका टूट जाना। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं, पूरे होते ही उनका जादू टूट जाता है। मिल जाते तुम तो शायद ये शिकत ना रहती। इन्होंने कहा है मिल जाते तो शायद ये शिद्दत ना रहती, कुछ अधूरी ख्वाहिश ही आँखों में ताउम्र सजते हैं। ओह हो, कुछ अधूरे ख्वाब ही आँखों में ताउम्र सजते हैं। बहुत खूबसूरत सी शायरी लिखी है आपने। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कासिम अली जी का हमारे पास मैसेज आया है ग्राम गोविंदपुर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहती हैं कि हमें भी गर्मियों में खीरे का रायता बहुत पसंद है। अरे वाह, थैंक यू, आपको भी खीरे का रायता पसंद है हमारी तरह। चलिए, हमारे श्रोताओं की चॉइस भी मिलती है। और ये मैसेज सबीना खान जी का हमारे पास आया है, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है आरजे खुशी सिस्टर जी को, गुड मॉर्निंग, लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम। अजीत कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है, साथ में ऋतिक जो हैं, माया देवी जी हैं, आदित्य कसाना जी हैं, और ये मैसेज पहुंचाते हैं ग्राम पोस्ट लदावली से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, जितेंद्र जी का मैसेज हमारे पास आया है DMR ऑफिस से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनवाती हूँ मैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अभी आकर बस आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, और अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुली ड्राइविंग कीजिए एंड पानी भी पीते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप इतने प्यार से बुलाएंगे तो खुशी कैसे नहीं आएगी। हाँ जी, आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, वक्त हुआ है 11:59, 11:59। और हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं विकी सागर जी, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और दोस्तों, अब मेरी जाने का भी वक्त हो गया है। जिंदगी में दोस्तों, हमेशा मुस्कुराने की एक वजह अपने पास जरूर रखिए। खुशियां हमेशा बड़ी बातों में नहीं मिलती, कभी अपनों की मुस्कान में, कभी एक प्यारी सी बात में, तो कभी अपने लिए निकाले गए कुछ सुकून भरे पलों में भी मिल जाती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इस गर्मी में भरपूर पानी पीजिए, हल्का और पौष्टिक भोजन खाइए, और जहाँ भी रहें अपनी मुस्कान यूं ही बनाए रखिए। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात करूँगी आपसे नई बातों के साथ, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ओहो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी जल्दी 3 बजे। ठीक है श्रोताओं, चलिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे, सी यू सून। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। टेक केयर एवरीवन।
1: अपील की है, फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉर्डर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और VP शिव कोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNH राजशेखरन को उपराज्यपाल KK कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोनाको के शासक अल्बर्ट द्वितीय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत मोनाको साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इससे ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोन मेसी ने मैच में हैट्रिक लगाते हुए इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पंडित जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ
4: 9412211111।
5: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए

0: है अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियाँ, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से।
1: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा, लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना, वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्ची की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
0: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
1: जी चलिए, बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है।
1: सच कहूँ रीना जी तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई।
1: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खानपान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खानपान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
0: वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी, जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे।
1: जी आरजी रीना जी, बिल्कुल। भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं, अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
0: ओहो, ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल आर्जेरीना, बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
0: ठीक है, अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजी रीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें तीन बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, रोटी, आलू और अनाज, जो हमें ऊर्जा देते हैं।
0: सेहत या भैया, प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
1: हाँ हाँ अर्जी रीना, बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन, जैसे दाल, अंडा, दूध, मछली और मांस, जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं। और तीसरा विटामिन और मिनरल्स, जो फल और सब्जियों से मिलता है, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
0: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है, पर सेहतिया जी, लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर, हमारा मन तो पटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
1: हाँ भाई, ये तो सबसे बड़ी समस्या है, पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
0: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल आरजे रीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है, लेकिन उम्र, लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
0: अच्छा सेहतिया जी, इतना सब कुछ बताया, तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण, तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
1: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है, जो हमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
0: वाह, अब ये सब के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है, ठीक हो जाएगा? सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
1: बिल्कुल, सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है, जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD, इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
0: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
1: अरे हाँ हाँ भाई, वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS, यह बीमारी या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS, ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण, यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
0: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना?
1: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी, लेकिन हमारे गाँव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियाँ महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
1: आरजी रीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
0: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं को कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल आरजी रीना, ये तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े मिथक की परत खोलते हैं।
0: सबसे पहले तो यही सुना है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ताजा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
1: देखिए, ये पूरी तरह गलत फहमी है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
0: ठीक है, अब दूसरा मिथक। लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
1: अरे नहीं आरजे रीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
0: अब सुनिए तीसरा। लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
1: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
0: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है। मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
1: नहीं आरजे रीना जी, ये तो सबसे खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
0: अब अगला मिथक। पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
1: बिल्कुल गलत। यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है। इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
0: ठीक है, एक और सुना है खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
1: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है। अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
0: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
1: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
0: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
1: आरजे रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कहीं।
0: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
2: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है जिसमें कि हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
0: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया पाया क्यों जाता है ये?
2: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है, उस बात को, उस हमारा जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे। तो कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है, क्योंकि भुखमरी भी काफी है,
3: बिल्कुल,
2: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना, एंड दूसरा अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं। तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
3: बिल्कुल
2: कुपोषण है, और अंडरवेट होना भी कुपोषण
3: है।
2: तो वी कैनॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
3: तो मैम, जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में, रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करें वो?
2: देखिये, जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टेबल है। जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है, क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो सीजनल फ्रूट होगा, भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, या जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है। सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स अगर मिलने हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है, जितनी फ्रेश होंगी एंड जितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गए, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया, ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चले जाती है। इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश करनी है कि फ्रेश खाए, जो भी हम खाएं, जैसे हमारे सिस्टम में है रोटी सब्जी दाल चावल, फिर हम दाल लें या नॉन वेज लें, प्रोटीन हमें उसी से मिलता है, ठीक है, दूध दही फल एंड सैलड, ये अगर हमारे न्यूट्रिशन, जैसे हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है जो हमारी थाली बनती है, तो वो सबसे अच्छा फूड है, चीपेस्ट भी है एंड बैलेंस्ड भी है। जितना हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, जितना ये फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है, बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है, और उसमें हमारा अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया, उसमें एडवर्टीजमेंट उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है, क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ही होता है, तो दैट इज एन अवेयरनेस जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया,
3: हाँ जी,
2: जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव है, ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
3: तो मैम, जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती हैं, उनके लिए डाइट कितना जरूरी है, और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
2: जैसे पूरी प्रेगनेंसी

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से, और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है, और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए, डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे, 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया, जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं, और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती हैं। टीकों की बात करें तो टीडी का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया, जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है, डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जब बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने

0: प्रोग्राम है वो यूआईपी के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में जो भी हमने शुरू में जिक्र किया उन टीकों को लगाना जरूरी है।
1: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे? क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
1: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
0: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहाँ पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1 हजार की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। और इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहाँ भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांति है तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
1: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
0: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास

0: उपलब्ध संसाधन है और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
1: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
0: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
1: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
0: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है। ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं। 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
1: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
0: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरा आखिरी संदेश ये है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था। भारत विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में शामिल है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में हुई। परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सरकार परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पुदुचेरी मंत्रिमंडल में आज 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के विधायक P राजवेल्लू और VP शिवकोलुंधु तथा भाजपा विधायक GNS राजशेखरन को उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताह तक खुल जाएगा। इनमें ब्रांड क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। मैच

0: ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, हमारी जो सोच है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जिंदगी को, लाइफ को मस्त और झकास बनाने के लिए, है ना रीना? अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ हम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा भी कर पाएंगे, है ना? तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है ना, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है, और चाहे आप विमेन्स हैं या फिर आप मेन्स हैं या आप बच्चे हैं या आप युवा हैं, ये जो कार्यक्रम है वो आप सभी के लिए है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप भी अपनी राय, अपने विचार रख सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। बिल्कुल, हम आपके साथ ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो रीना, तुम कैसी हो पहले ये बताओ।
3: आनंद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ। आई होप कि तुम बहुत अच्छे
2: हो। अच्छा हूँ यार मैं। और देखो दोस्तों, मैं और रीना आए हैं चटपटी बातें लेकर। तो रीना, हमारे शो का नाम है सोच बदलो, ये डेली हम प्रसारित करते हैं।
3: बिल्कुल,
2: क्या मानना है, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा या नहीं?
3: अरे बिल्कुल, अगर हम सोच बदलेंगे तो हमारा समाज भी बदलेगा और हमें जो आसपास सुन रहे हैं उनकी भी सोच बदलेगी, फिर वो एक दूसरे तक बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो आज सोच बदलो का जो टॉपिक है वो है भैया ऑनलाइन फ्रॉड से आप कैसे बचें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टॉपिक पे बात करना। तो जितने भी हमारे इस वक्त दोस्त, हमारे प्रिय मित्र रेडियो से जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद में रीना वापस आएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड से, धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते हैं। तमाम जानकारियां हैं आज आपके लिए इस प्रोग्राम में, तो आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, आई लव यू।

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो श्रोताओं, आज हम मुद्दा लेकर आए हैं आपके लिए कि आप ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रीना, डिजिटल जमाना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आ गया है, हर इंसान जो है डिजिटली आगे बढ़ना चाहता है, हर किसी को जो है अब डिजिटली ग्रो करना है, मतलब सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो लेने देने का सीन भी ऑनलाइन हो गया। और इसी बीच तमाम सारे जो हैकर्स हैं, जो स्कैमर्स हैं, उनकी भी कतार मार्केट में बढ़ती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं
1: ज्यादा बढ़ रही है
0: जी। जो फ्रॉड के मामले रही ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। कोई सीन या कोई कहानी या किस्सा है तुम्हारे साथ या कभी हुआ हो? हाँ तो रीना, वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो?
1: देखो, मैं किसी और की कहानी बताने से पहले मैं अपनी बता देती हूँ।
0: बता, बिल्कुल बता यार।
1: एक्चुअली ये हुआ ना कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, कपड़े बहुत खरीदती
0: हूँ, सभी करते हैं।
1: हाँ, तो मेरे को ना, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा बहुत अच्छे से सूट के, जो उन्होंने अपना खुद का पेजेस बना रखा था कि यहाँ से सूट ऑर्डर करो और कम दाम में आपको अच्छे सूट मिलेंगे। तो उन्होंने ऑफर डाला था कि 500 में आपको 2 सूट मिलेंगे, अगर आप 1000 डालते हो तो आपको 5 सूट मिलेंगे। तो मैंने सोचा वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने उन्हें मैसेज वगैरह किया, तो मैंने जो भी सूट लेने थे मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा उनको, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको इतने इतने पेमेंट करने पड़ेंगे। मैंने पेमेंट कर दी 1000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद के मैंने बोला कि मेरा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपने जो ये 1000 रुपए पेमेंट कराया ना, तो ये हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, आपको 8000 और करने हैं।
0: अच्छा।
1: तो मैं वही समझ गई, मैं क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पर।
0: तो मतलब तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हो गया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: दोस्तों, अब देखिए, रीना के साथ तो जो है धोखाधड़ी वाला सीन हो गया, आपके साथ ना हो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप इस चीज का शिकार होते हैं तो आप कहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, कहाँ पर जाकर आप जो है इसकी सुनवाई करा सकते हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। श्रोताओं, सबसे मजे की बात पता है क्या है कि आजकल ना जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोग, जो स्कैम करते हैं मार्केट, इतने इनके जो तरीके हैं ना, बहुत सारे बदल गए, एकदम आपको जेन्युइन लगता है रीना। जैसे केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको कॉल आ जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: कभी
1: बिल्कुल।
0: आपको व्हाट्सएप पे कोई अचानक से लिंक आ जाएगा,
1: कभी बोलेंगे बैंक वाले, हाँ, बोल रहे हैं,
0: कॉल्स आ जाती हैं। और आजकल तो शादी के कार्ड भी आ रहे हैं, ऐसा लगेगा किसी ने भेजा है, क्लिक करोगी तो पैसा
1: पैसे कट जाते हैं,
0: ऐसा वाला सीन भी चल रहा है। तो दोस्तों, आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और इसी बात को जो है हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतराल का समय है, म्यूजिकल ब्रेक भी लेंगे, अंतराल का समय है और उसके बाद आपको सुनवाएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और बचने के लिए आपको कहां कैसे शिकायत दर्ज करानी है, सारी जानकारी आपको मिलेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद,
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे,
0: यह है आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। चलिए एक छोटा सा अंतराल, फिर मिलते हैं।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: श्रोताओं, एक बार फिर से पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रीना और मैं प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं सोच बदलो, और इस प्रोग्राम का नाम ही इतना प्यारा है, तो ये सोचिए प्रोग्राम कितना प्यारा होगा। वेल, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, मैं और रीना, आपसे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक खास जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ एक छोटा सा आपके साथ एक प्रोग्राम साझा कर रहे हैं। आप इसको भी सुनिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम थोड़ी देर में मिलेंगे, मैं और रीना। क्यों रीना,
1: सुनवा दें? बिल्कुल, हाँ, अरे बिल्कुल।
0: दोस्तों, बहुत जरूरी है, देखिए सही सोच के साथ साथ सही जानकारी का होना भी जरूरी,
1: बहुत जरूरी है।
0: तो आइए सोच बदले प्रोग्राम के अंतर्गत सुनते हैं ये खास और महत्वपूर्ण जानकारी।
5: आज का विषय है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, यानी ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर होने वाली ठगी। ऑनलाइन शॉपिंग देखो हमारे लिए सुविधा भी है, उससे पर हमारे लिए खतरा भी है। तो चलिए जानते हैं। श्रोताओं, आज हम कपड़े, मोबाइल, टीवी, दवा, टिकट सब कुछ ऑनलाइन खरीदते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक तो हमारा समय बचाती है, साथ में दाम की तुलना आसान बनाती है और घर बैठे सुविधा भी देती है। लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं। चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। इसमें दो लोग हैं, पहले हैं राहुल और दूसरा है राज। राहुल कहता है, अरे वाह, ये वेबसाइट तो नया स्मार्टफोन सिर्फ 6,000 रुपए में दे रही है,
6: जबकि मार्केट में वही फोन 15,000 रुपए का है।
5: अब राज कहता है, इतना सस्ता कहीं नकली तो नहीं? फिर राहुल कहता है, नहीं नहीं, वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल लग रही है और फ्री डिलीवरी भी है। तभी लो, कार्ड से पेमेंट हो गया। अब राहुल जो है चिंता में है, क्योंकि 5 दिन हो गए ना तो डिलीवरी आई है ना कस्टमर केयर फोन उठा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद वही वेबसाइट बंद हो जाती है। मतलब अब राहुल समझ जाता है कि वह ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड का शिकार हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड में नकली वेबसाइट बनाई जाती है, असली ब्रांड की नकल की जाती है, बहुत सस्ते ऑफर दिखाए जाते हैं, पेमेंट होते ही सामान नहीं आता, आता है तो नकली सामान आता है या फिर वेबसाइट ही गायब हो जाती है। कई मामलों में कार्ड और बैंक डिटेल की चोरी भी हो जाती है। आखिर लोग ठगी में क्यों फंस जाते हैं? श्रोताओं, ठग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। आज ही ऑफर खत्म हो जाएगा, स्टॉक लिमिटेड है, सिर्फ मिनट में खरीदें। जल्दबाजी में हम जांच करना भूल जाते हैं। याद रखिए, अगर ऑफर बहुत अच्छा लगे तो जरूरी नहीं कि वह सच हो। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कैसे सुरक्षित रहें, ये जानना भी जरूरी है। ऑनलाइन खरीदारी से पहले ये सावधानी जरूर अपनाएं, केवल जानी पहचानी वेबसाइट से खरीदें। वेबसाइट का नाम ध्यान से देखें, स्पेलिंग गलत हो सकती है, HTTPS और लॉक का निशान देखें, बहुत सस्ते ऑफर से सावधान रहें, अनजान वेबसाइट पर कार्ड स्वैप ना करें, कैश ऑन डिलीवरी संभव हो तभी चुनें। तो बुजुर्ग और नए यूजर्स के लिए खास सलाह मैं देना चाहूँगा। श्रोताओं, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार अक्सर बुजुर्ग, पहली बार ऑनलाइन खरीदारी करने वाले, छात्र और गृहिणियाँ होती हैं। इसलिए परिवार में सबको समझाइए, बिना पूछे किसी लिंक से खरीदारी ना करें, शक हो तो किसी जानकार से सलाह ले लें। फ्रॉड हो जाए तो क्या करें, ये जानना भी जरूरी है। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो तुरंत कॉल करें 1930 पर। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी जल्दी पैसे वापस मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के 5 सुनहरे नियम मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। बहुत सस्ता मतलब बहुत जोखिम, अनजान वेबसाइट खतरे की घंटी, जल्दबाजी नुकसान, जानकारी साझा करना गलती, सावधानी सुरक्षा। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन शॉपिंग सुविधा है लेकिन समझदारी के बिना खतरा भी है। स्मार्ट खरीदारी करें, सुरक्षित खरीदार करें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 MHz आपके शहर रेडियो स्टेशन, जो आपको एंटरटेन तो करता ही है, साथ में काम की बात भी बताता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस शो से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखें। सबसे पहले, अगर आपको कोई सस्ता ऑफर दिखाई देता है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें कि वो सस्ता है या फिर फ्रॉड हो। अगर आप किसी वेबसाइट से किसी लिंक के जरिए शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट होती है या फिर वहाँ पे लॉक का साइन है या फिर नहीं है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही शायद आपको ठगने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये जो ठग है ना, वो जितने शातिर है ना, आपको पता नहीं है कितने शातिर हैं। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 MHz।
0: तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये जानकारियां कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएंगी। और इसी तरह के प्रोग्राम हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि भैया हमारा जो समुदाय है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारी जो मुरादाबाद की जनता है, उसको अवेयरनेस मिले और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी सोच भी बदले। जब हम सोच बदलेंगे तो हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी, क्यों रीना?
1: बिल्कुल। और जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी आज से बंद कर देंगे।
0: बिल्कुल, ऑनलाइन शॉपिंग तो बंद मत करो यार रीना, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से आपको बचना है ना। शॉपिंग तो मतलब आप कर सकते हो, लेकिन हाँ कोशिश करो लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा मिले तो बेहतर है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ऑनलाइन तो आप करिए खरीदारी, लेकिन ऑफलाइन भी करिए, क्योंकि लोकल फॉर वोकल बहुत जरूरी है। अपने आसपास के प्रोडक्ट को अगर हम ही नहीं खरीदेंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे बढ़ेगी।
1: लेकिन ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम से शॉपिंग करते हैं उसको कम करेंगे,
0: कम करें आप ऑनलाइन पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर आपको कोई लिंक आ रही है, आपको ऑफर दिख रहा है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए श्रोताओं, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अभी अपनी बातों को विराम देते हैं और उसके बाद जब लौट कर आएंगे तो आपसे जाने की अनुमति देंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं और रीना आपके साथ छोड़ के जाएंगे। प्रोग्राम चल रहा है सोच बदलो, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही अच्छा ये गीत, और आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम, जिसे लेकर आज हाजिर हूँ मैं आनंद, और साथ में आरजे रीना। तो रीना, फाइनली दोस्तों के साथ बातचीत करते करते कैसे हमारा समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला है ना।
1: बिल्कुल भी नहीं पता चलता
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो अब बस जाने का समय है, लेकिन बस छोड़ के जाएंगे कुछ खास बातें आपके लिए। देखिए दोस्तों, याद रखिए सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो कोई भी फ्रॉड आपका नुकसान नहीं कर सकता है ना, और ना ही कोई आपका कुछ बिगाड़ पाएगा। तो बस आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए। कोई भी दोस्त अगर आपको फेक आईडी या फ्रॉड आईडी बनाकर आपसे पैसे मांगता है, कोई लिंक आपको भेजता है, तो आप उन चीजों से जरा बचकर रहिए। कुछ भी इस तरह की आपके साथ बातचीत होती है या कोई भी ऐसी हरकत होती है, तो आप जो है पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके जरूर शिकायत दर्ज कराएं, क्यों रीना।
1: और जिसके नाम से आईडी बनाकर आपको मैसेज किया जा रहा है, उस आदमी को भी जरूर सूचित करें इसके बारे में कि आपके नाम से आईडी बनाकर पैसे मांगा जा रहा है,
0: पता चल सके ना बिल्कुल, कि उसके साथ क्या हो रहा है।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों आज के सोच बदलो में बस इतना ही। अपनी सोच बदलिए, सतर्क रहिए और सेफ रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए
1: एफएम मुरादाबाद 89.6
0: रेडियो,
1: बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
0: चलिए जी, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय
1: बाय गाइस।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो, और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता, और नमस्कार सुजाता जी।
6: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है, उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में पीरियड्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी कारण ये बन सकता है।
6: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बताएं कि एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आम लोग इसे शुरुआती स्तर पर कैसे पहचान सकते हैं?
7: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं एनीमिया के कुछ लक्षणों को इग्नोर करती हैं, उन्हें नजरअंदाज करती हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी चीज है। शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि इंसान जल्दी जल्दी थक जाता है, चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, सांस भी फूल सकती है, चेहरे पे होठ पे पीलापन आ जाता है, शरीर पे सूजन आ सकती है, बालों का झड़ना भी हो सकता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है और स्पेशली महिलाओं को ये लगता है कि क्या ऐसी खास बात है, शायद ज्यादा काम कर लिया इस वजह से ये परेशानी हमें हो रही है। लेकिन अगर ये सब चीजें कंटिन्यूअस निरंतर बनी रहे तो ये जरूरत है जानने की कि ये किस कारण से हो रहा है, कहीं हमें खून की कमी तो नहीं हो रही है। ऐसे में कमजोरी बार बार महसूस होने पे, सीढ़ियां अगर थोड़ी सी चढ़ने पे सांस फूलने लगे, या निरंतर थोड़ा स्पीड में चलने में अगर सांस फूलने लगे, तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने खून की जांच जरूर से करवानी चाहिए।
6: अच्छा, क्या एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं?
7: देखिए, ज्यादातर एनीमिया आयरन की कमी से होता है, भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश के राज्य में भी ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से होता है, इसके और भी बहुत कारण होते हैं। हम आयरन की कमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, जंक फूड जब ज्यादा खाया जाता है, जब पोषण संबंधी कारण हो सकता है और गैर पोषण संबंधी कारण भी हो सकता है। अगर हम पोषण संबंधी कारणों की बात करें तो आयरन के साथ साथ कभी कभी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसे हम कहते हैं। और गैर पोषण संबंधी कारणों में जैसे अगर ज्यादा खून बढ़ना, जैसे मैंने बताया ना कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अगर बहुत ज्यादा पीरियड्स आए, किशोरियों को अगर ब्लीडिंग ज्यादा आने की समस्या हो, इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, अचानक शरीर में खून की कमी हो जाती है, तथा कुछ बीमारियां जैसे मलेरिया, जो शायद लोगों को इतना नहीं पता है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के इन्फेक्शंस और किडनी की बीमारी और कैंसर, इन सब में भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा अभी आपको बताया, मुख्यतः भारत में और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है।
6: क्या ये सिर्फ एनीमिया महिलाओं तक सीमित है या पुरुष और बच्चे भी इससे प्रभावित हैं?
7: ये एक बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि हम लोग जैसा देखते हैं महिलाओं में ही ये सीमित नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि बच्चों में, पुरुषों में, बुजुर्गों में, ये किसी भी एज को नहीं छोड़ता है, सब में ये बीमारी हो सकती है। हालांकि महिलाओं में ये थोड़ी ज्यादा होती है, किशोरियों में ज्यादा होती है, कारण बच्चों में ज्यादा होती है। कारण ये है कि खान पान की कमी और अपने ऊपर थोड़ा लापरवाही करना या पौष्टिक तत्व ना लेना। महिलाओं में आप जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इन सब में संभावना अधिक होती है। बच्चों में क्योंकि उनके शरीर को अधिक पोषण चाहिए, आयरन विटामिन की जरूरत उनके शरीर को ज्यादा होती है जब ये ग्रोइंग फेज होती है। और इसके अलावा गलत खान पान की आदतें, जैसे बच्चे आजकल जंक फूड्स बहुत खाते हैं, बार बार पेट में कीड़े हो जाने, जैसे वर्म इन्फेस्टेशन अगर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। इसलिए हर एज में और हर सेक्स में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा।
6: अच्छा डॉक्टर, हमें ये भी बता दें कि हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए और कब इसे खतरनाक माना जाता है?
7: WHO की गाइडलाइंस के अनुसार जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनमें नॉर्मल जो हम हीमोग्लोबिन का लेवल लेते हैं वो है 12 ग्राम या उसके अधिक, पुरुषों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर या उससे अधिक, लेकिन गर्भवती महिलाओं में अगर 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे अधिक होता है तभी हम उसे नॉर्मल मानते हैं। 11 ग्राम से कम अगर हीमोग्लोबिन होता है तो हमें उसे फिर एनीमिक कैटेगराइज करते हैं। ये कैटेगरी एनीमिया की माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है।
6: तो किन स्थिति में हम जानेंगे कि ये सीवियर एनीमिया है?
7: अगर 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो ये सीवियर है, ये खतरनाक है और ये जानलेवा भी हो सकता है।
6: क्या मोटे लोगों को एनीमिया नहीं होता?
7: बिल्कुल हो सकता है। मोटापे का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पोषण आपको मिल रहा है, ओवर ईटिंग अगर आप कर रहे हैं या हिडन हंगर जैसी, अगर जैसे कुपोषण, मतलब जिसे कहते हैं ना, मोटापा इज अ काइंड ऑफ कुपोषण, ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और मोटे लोगों को कई बार वो तला भुना जंक फूड ज्यादा खाते हैं, वो पोषण और जो कि जरूरी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो नहीं खाते हैं। बेसिकली एनीमिया हमारा आयरन की, विटामिन की, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। इसलिए ऐसे लोगों में एनीमिया होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि उनका जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसलिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है।
6: अच्छा, रोजमर्रा के खाने में कौन कौन सी सस्ती और स्थानीय चीजें शामिल करें जिससे एनीमिया से बचा जा सके?
7: वैसे तो आयरन फोलिक एसिड की गोली हमारे प्रदेश में हर स्वास्थ्य केंद्र पे, चाहे वो उपकेंद्र हो, चाहे वो पीएचसीज हो, सीएचसीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ सब जगह ये निशुल्क उपलब्ध है। लेकिन खाने में जो जरूरी चीजें हैं जो कि इंसान अपना सकता है इस बीमारी से अपने बचाव के लिए, वो हैं दालें, अनाज जैसे चना है, मसूर है, मूंग है, सोयाबीन है। इसके अलावा अंकुरित दालें जैसे हैं या मूंग चना है, इनको ले सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, सरसों है, और सबसे सस्ता जैसे कहना चाहिए गुड़ और चना, जो कि हर घर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली है, सेब है, अंडा, मांस मछली, जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो इससे भी अपने को आयरन की कमी दूर कर सकते हैं। आयरन के साथ साथ अगर आप विटामिन सी का सेवन करें तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है। अगर ये आप आयरन के जो खाने हैं, आयरन रिच फूड्स जो मैंने अभी आपको बताया, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना, दाल, अंडा, मांस मछली, इसके साथ अगर आप ये वाले फल भी खाएं जो कि सिट्रस फ्रूट्स कहलाते हैं, तो इसमें आयरन का अवशोषण और भी बेहतर हो सकता है।
6: मुझे ये भी जानना है कि आयरन की गोली लेने का सही तरीका क्या है और खाने के साथ या खाली पेट उसे खाया जा सकता है?
7: देखिए, आयरन की गोली लेने का सबसे सही तरीका तो खाली पेट है, और ये ज्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि खाली पेट लेने पर कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द, ये सब भी महसूस हो सकता है। ऐसे में इसे हल्के भोजन के करीब एक या दो घंटे बाद लिया जा सकता है। लेकिन ये चीज का खास ख्याल रखें कि चाय और कॉफी के साथ या उसके तुरंत बाद आयरन नहीं, गोली जो है वो कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और प्लस कुछ पदार्थ जैसे टैनन्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो सब नुकसान करते हैं। अगर आप आयरन की गोली को नींबू पानी के साथ या आप संतरे के रस के साथ आप लें तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
6: अच्छा, हमें ये भी बताएं डॉक्टर कि क्या बच्चों में एनीमिया जब हो जाता है तो क्या उनकी पढ़ाई या मानसिक विकास को प्रभावित करता है?
7: अब बहुत हद तक ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कि गर्भवती माताएं और धात्री माताएं स्पेशली अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में लोग कि गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो वो दो केले खाती हैं, अपने लिए भी खाती हैं, अपने बच्चे के लिए भी खाती हैं। तो ये बहुत गर्भ से ही अगर आप आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी, आप पूरी तरह से आयरन खाएंगे तो आपके बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। और बच्चों में तो स्पेशली अगर एनीमिया हो तो उनका वो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों पे इसका असर पड़ता है। अगर उनकी याददाश्त, उनकी ध्यान लगाने की क्षमता, उनकी सीखने

0: आए। साथ में जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने पे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कि डिवॉर्मिंग के लिए हम लोग गोली देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े भी मर सकें, तो उसका भी सेवन 6 महीने पे अगर करें तो जो वर्म इन्फेस्टेशन है वो खत्म हो सकता है, जिस जो भी एक कारण होता है एनीमिया करने का। और बाकी तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि पौष्टिक तत्व जो हैं वो खाने में लेने चाहिए। आयरन की गोली ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है। स्कूलों में भी हमारा विप्स का प्रोग्राम चलता है जिसमें कि स्कूल के बच्चों को हर हफ्ते आयरन की गोली दी जाती है स्कूलों के अंदर। तो इस तरह से भी घर में भी और घर के बाहर भी आयरन की गोली का सेवन करना, खाने में पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना और समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच कराना।
1: हमारे जितने भी ग्रामीण श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से?
0: देखिए, अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मगर आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि यही चीज अगर बढ़ जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। और इसीलिए बहुत, और ये बचाव पूरी तरह संभव है, आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। ये बीमारी आप छोटी छोटी अपनी आदतों में सुधार लाके, अपनी जीवन शैली में सुधार लाके आप इस बीमारी पे कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हैं। इसलिए संतुलित आहार, साफ सफाई, नियमित जांच, आयरन की गोली और डिवॉर्मिंग, ये सब चीजें आप, इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आप आयरन की कमी से हमेशा के लिए बच जाएंगे।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम हमारे श्रोताओं को। तो आगे हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर कि क्या सभी गांवों में नियमित हीमोग्लोबिन जांच की सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार ने ये निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में, सभी अस्पतालों के माध्यम से हीमोग्लोबिन की जांच होती है और ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में, आपके घर के पास जो भी कोई सरकारी अस्पताल है, चाहे वो PHC हो चाहे CHC हो, वहां जाकर आप ये जांच करा सकते हैं और अपने हीमोग्लोबिन का स्टेटस पता कर सकते हैं।
1: अगर किसी को IFA की गोली से दिक्कत होती है जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, तो इसके लिए क्या विकल्प है, वो क्या करे?
0: देखिए, ये मन में बहुत भ्रांतियां हैं आयरन के दवा को खाने में, और कई बार ये कहा जाता है कि आयरन की गोली अगर खाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो, शौच में जब आप जाएंगे तो काले रंग की लैट्रिन हो जाएगी,
1: बच्चे भी काले
0: हो जाएंगे। शायद इसलिए भी कुछ परिवार में ये दवा नहीं खाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयरन की गोली को लेने में आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी आना है तो आप इसे घबराएं नहीं। ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हल्के से जो ये सिम्टम्स हैं इनको अगर आप खाली पेट लेने के बजाय खाने के 1-2 घंटे बाद लें, नींबू के रस के, मैंने बताया ना, नींबू पानी के साथ लें या आप संतरे के जूस के साथ ले सकते हैं, आंवला आप साथ में अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स कम भी हो सकते हैं। हम लोग वैसे खाली पेट कहते हैं, लेकिन अगर आपको खाने के बाद ये परेशानी आती है तो आप इसे खाली पेट ना लें। इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। चाय, कॉफी का सेवन आयरन की गोली के साथ ना करें क्योंकि ये आपके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देगी, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगी। और जी मिचलाता है अगर तो नींबू पानी शिकंजी के रूप में आप ले सकते हैं। ORS का पैकेट्स फ्री मिलते हैं, वो भी आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई खास सॉल्ट जो होती है आयरन की, उसकी वजह से ये लक्षण आते हैं, जैसे कहते हैं ना कभी कभी कोई दवा किसी को सूट नहीं करती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उस सॉल्ट के बजाय वो आपको कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट करके कोई दूसरी सॉल्ट भी दे सकती है। और अब बहुत तरह के आयरन की दवाएं उपलब्ध हैं। और साथ में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रदेश में इंट्रावीनस आयरन, जो कि पहले आयरन सुक्रोज के ही फॉर्म में मिलता था, अब हम लोगों ने आयरन FCM, एक नई हमने इंजेक्शन भी लॉन्च किया है अपने प्रदेश में, और इसके द्वारा भी, लेकिन ये

0: किसी को नहीं दिया जाता। ये तभी दिया जाता है जब सीवियर एनीमिया हो, मॉडरेट एनीमिया हो, तो जरूरत के हिसाब से वो भी दिया जा सकता है। मतलब आयरन की कमी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, तो कोई ना कोई विकल्प तो आपको सूट कर ही जाएगा।
1: अभी आपने इंजेक्शन की बात करी डॉक्टर, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है कि या सिर्फ गर्भवती महिलाओं को, ये किस एज के सीवियर एनीमिया को दिया जा सकता है?
0: देखिए, अभी आयरन का जो हमारा फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो FCM का इंजेक्शन है, ये अभी हमने गर्भवती महिलाओं को और साथ में धात्री महिलाओं के लिए हमने शुरू किया है, क्योंकि ये तब दिया जाता है जब आयरन की जो हमारा लेवल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मॉडरेट और सीवियर एनीमिया में हम लोगों को, और ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का विकल्प है। फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम जो FCM का है, ये इसमें अभी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बच्चों के लिए आयरन का सप्लीमेंटेशन सिरप की फॉर्म में, क्योंकि ये इंट्रावीनस इंजेक्शन है, तो इंट्रावीनस से आप समझती है ना, नस में ये सुई दी जाती है, तो ये अभी बच्चों को हम नहीं देते हैं, ये अभी फिलहाल हम लोग गर्भवती महिलाओं को, और इसके अलावा हम लोग किशोरियों को भी दे सकते हैं अगर बहुत जरूरत हो तो, मैंने बताया ना ब्लड के विकल्प की वजह से, लेकिन बच्चों के लिए हमारा आयरन सिरप आता है वो उन्हें दिया जाता है।
1: तो क्या वो हर CSCPSC पर उपलब्ध?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने, अगर आपको जाने में भी अगर परेशानी हो तो आपके घर के आसपास जो आशा या आंगनवाड़ी सेंटर हो या ANMs हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लाके ये शीशी खुद घर पे भी दे सकती है, दे भी देती है, और आप वो तरीका बता देगी कि किस तरह से आपको उसे देना है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस जानकारी के जरिए बहुत लोगों को या कुछ लोगों को इसका लाभ मिले और इस बीमारी से उन्हें निजात मिले। थैंक यू।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त RG आनंद, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद की प्रेरक कहानियों की,
6: के साथ आपकी दोस्त RG खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया, 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं।

0: होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
2: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
3: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
1: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान

0: प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
1: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
7: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
6: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
8: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड मुरादाबाद।
9: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
10: आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। सो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए शो महिला मंच, जहाँ हम बात करने वाले हैं बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ के बारे में। तो श्रोताओ, हमारे समाज में ना लंबे समय तक बेटियों को बोझ समझा जा रहा था। कई परिवारों में बेटी को जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। इसी सोच के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अभियान सीधा एक संदेश देता है, बेटी को बचाना जरूरी है और उसे पढ़ाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब बेटी पढ़ती है तभी सब परिवार आगे बढ़ता है और समाज मजबूत बनता है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जब बेटी शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक परिवार को रोशन नहीं करती है, बल्कि वो 3 पीढ़ी को रोशन करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 पीढ़ी को कैसे रोशन करती है। तो पहले तो अपने माता पिता का घर, दूसरा ससुराल, तीसरा अपने बच्चों को वो खुद पढ़ा सकती है। तो देखा, बेटी एक परिवार को नहीं बल्कि 3-3 पीढ़ियों को रोशन करती है। तो इसीलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। और बेटियों के प्रति ना हमारा सोच हमें बदलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा, बल्कि उन्हें गिराना नहीं होगा, डिमोटिवेट नहीं करना होगा, उन्हें मोटिवेट करना है ताकि वो आगे बढ़े, कदम से कदम मिलाकर चले और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करे। सो यूं ही ढेर सारी आज हम बेटियों के ऊपर बात करते रहेंगे। बस आप आरजरीना के साथ महिला मंच में यूं ही कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार और कनेक्ट हो गई हूँ आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और अब हम बात करने वाले हैं, यानी कि कुछ साल पहले देश के कई राज्यों में लड़कियों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। इसका मुख्य कारण था लड़कियों के जन्म को महत्व ना देना। कई जगहों पर बेटियों को पढ़ाई का मौका भी नहीं दिया जाता था। यही वजह कि सरकार को एक ऐसा अभियान शुरू करना पड़ा जो लोगों की सोच बदल सके। इस अभियान का मकसद था बेटी को जन्म देने का अधिकार, बेटियों को शिक्षा देना और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान देना। पहले के टाइम में होता था कि जैसे बेटी जन्म होती थी ना, उसको वहीं पर मार दिया जाता था। कानो कान किसी को खबर भी नहीं होने दिया जाता था। ये कहा जाता था कि ये हमारे लिए बोझ है, हमारे लिए खर्चा बनाएगी, यानी कि पहले हम इसको पालेंगे, फिर ये बड़ी होगी, फिर शादी में खर्चा। तो बहुत सी ऐसे सोच थी जो लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ने देते थे, बल्कि उनके जन्म पर ही उनकी जिंदगी हम छीन लेते थे। लेकिन ये जैसे जैसे सरकार ने इनिशिएटिव चलाया, हम सबकी सोच बदली और आज यही दिन है कि लड़कियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। सो ढेर सारी बातें हम आप सभी के साथ करते रहेंगे। बस आप यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। जब समाज की सोच बदलेगी तभी असली बदलाव आएगा। आज रीना के साथ आप कनेक्ट हैं महिला मंच शो में और यू ही हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, सुनना बिल्कुल ना भूले अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में

बेटियां ही नहीं होती तो क्या होता, ना घर में बहन की हंसी होगी, ना माँ की ममता, ना राखी का त्योहार होगा। बेटियां सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं होती, बल्कि पूरे समाज की ताकत होती हैं। जब बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खेल, पढ़ाई, सेना, विज्ञान, हर जगह अब बेटियां आगे बढ़ रही है। बस जरूरत है उन्हें सही मौका देने का, और जब मौका मिलता है तो बेटियां दुनिया जीत लेती है। तो दोस्तों याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी गर्व है। और सुनते रहिए एक और शानदार गीत, आप सभी के बीच प्रस्तुत करेंगे हम, और हमारी देश की बेटियों के लिए गाना है। सो यू ही आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

और किसी ने सच ही कहा है, जब बेटियां होती है तभी घर में रौनक होती है। आज रीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और सच ना है कि अगर बेटियां नहीं होती, और सच तो ये है कि अगर बेटियां नहीं होती तो ये समाज आगे नहीं बढ़ता। कहते हैं ना, जिस कोख से हम जन्म लेते हैं उसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसी को जन्म लेने के लिए मना करते हैं। आखिरकार बेटियां जननी होती हैं, जिसने इस दुनिया को रचाया आज उसी को जीने का और उसी से जीने का अधिकार आज हम छीन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जननी है उसको जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहन, बेटी, माँ, मित्र है आप सभी के लिए, जो घर को स्वर्ग बना देती है। और जब वो घर में होती है ना, तो घर का रौनक ही अलग होता है। आपने देखा होगा ना कि हम बचपन में जब भी स्कूल से घर आते थे तो सबसे पहले हमारे मन में ना एक ही ख्याल आता था, माँ। माँ कहाँ है? अगर आपको पूरे घर में माँ की झलक ना दिखे तो पूरा घर को ना हम सर पर उठा लेते थे। तो सोचिए, जब माँ घर पर नहीं दिखती है तो हम पूरा घर को सर पर उठा लेते हैं, और उसी जननी को हम जन्म देने से डरते हैं। तो डरिए मत, बेटी है, जननी है, माता है, और जब जननी आगे बढ़ती है तो हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। सो और भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, बस बने रहिए आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी आर्जेरीना के साथ।

अंजी अर्जुरीना के साथ अब कनेक्ट है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आज के समय में ना शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और यहाँ तक बेटियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना बेटों के लिए है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार की सोच बदल देती है। पढ़ी लिखी बेटियाँ सही फैसले लेती है, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती है और समाज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी बेटी को जरूर पढ़ाए और उन्हें आगे जरूर भेजे, उनका साथ दे। और आप भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ।

आपके साथ आपकी आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। तो श्रोताओ, अब हम बात करने वाले हैं, जिस बेटी को हम पढ़ने से मना करते थे, वही बेटी आज पढ़कर हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। वही बेटियां आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पुलिस ऑफिसर बन रही हैं। समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और यही इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। आज कई परिवार बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उनके सपनों को उड़ान देते हैं। यही बदलाव हमें आगे भी जारी रखना है और अपनी बेटियों को डीमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करना है। उन्हें बोलना है कि तुम ही हो देश की नारी और तुम ही हो देश की बेटी और हमें तुम पर गर्व है। तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो दोस्तों, जब एक परिवार अपनी बेटी का साथ देता है ना, तो उसकी देखा देख हर किसी की सोच बदलती है और हर किसी के दिमाग में यही आता है कि हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और हमारी बेटी भी आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। तो श्रोताओं, बने रहिए यूं ही आरजे रीना के साथ और भी हम बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ। तो श्रोताओं, जब बेटियां पढ़ती है ना, आगे बढ़ती है ना, तो अपने देश का नाम रोशन करती है। तो उनमें से अगर बेटियों की बात करूं तो पीवी सिंधु, कल्पना चावला, साक्षी मलिक, ये हमारी बेटियां देश की शान है, जिन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी लड़के से कम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकती है। बस एक ही बात चाहिए कि आप उनके साथ रहें। तो जब बेटियां आगे बढ़ती है ना, तो हमें भी देखकर गर्व होता है कि अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सोच बदल रही है। तो इसी सोच के साथ आप अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, उन्हें बोझ ना समझे। और यूं ही आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहे जी। अगला गाना भी बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आती हूँ आरजे रीना के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: अरे
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
6: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
5: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ 43986/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर है। जी हाँ, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं। दोस्तों तो तैयार हो है ना आप? अच्छा, फ़ोन लगाने में व्यस्त हैं, चलिए अच्छी बात है, कॉल लगाइएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और साथियों, कहते हैं ना कि दिल के रिश्तों से बनते तो दूरियां भी मिट जाती हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं तो दूरियां भी मिट जाती हैं। मुस्कान अगर सच्ची हो तो महफिलें भी खिल जाती हैं। आपके प्यार और साथ से ही हमारा हर ये जो लम्हा है, ये जो सफ़र है, और हसीन बन जाता है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे इस ब्यूटीफुल शो में। शो का नाम है हेलो फरमाइश, और एक बेहतरीन सा गाना आप सभी के लिए खुशी यहाँ पर प्ले करती है। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, तब तक मैं आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि आप कॉल लगाने में व्यस्त हैं, ऐसे ही कॉल लगाते रहिए और ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा। फ्रॉम द मूवी टाइगर जिंदा है।
1: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन, और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है, आपका फेवरेट शो लेकर। जी हाँ, हेलो फरमाइश, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट गाना सुन सकते हैं। एंड अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुना किशोर कुमार जी की आवाज़ में, एंड साथ में लता मंगेशकर जी दे रही थी साथ, और म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए बाहर गर्मी है और आपने गाना भी सुना अभी अभी, गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर। और सच तो यही है कि इस मौसम की धूप में किसी का भी रंग नहीं दिखती, ये मौसम किसी का भी रंग नहीं दिखती है दोस्तों। अगर बिना तैयारी के बाहर निकलेंगे तो धूप अपना असर ज़रूर छोड़ेगी, इसीलिए घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं एंड छाता लेकर भी जाएं, कैप साथ रखें, कैप को भी आप कैरी कर सकते हैं। और खूब पानी पीते रहें, क्योंकि असली खूबसूरती है सिर्फ रंग से नहीं बल्कि आपकी मुस्कान, प्यारी सी स्माइल और अच्छी सेहत से होती है। तो अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या उनका नाम है, जानते हैं हम उन्हीं से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, आपको भी सर, अपना शुभ नाम बताएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी बताएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, बढ़िया है, अपना रेडियो संगीत सुनते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं।
0: जी अच्छी बात है, रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं और आप हैप्पी रहते हैं। वैसे सर बताएगा अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी यहाँ मेरी कपड़े की शॉप है।
0: अच्छा, कपड़ों की शॉप है आपकी?
1: हाँ जी, यहाँ पे जो है दिल्ली NCR में पड़ता है गाजियाबाद।
0: हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली NCR में पड़ता है। अभी मौसम कैसा है वहाँ का?
1: जो ग्रुप भी है, ये बुजुर्ग लोग जो हम जो है करोके पे गीत संगीत भी गाते हैं।
0: अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है सर, तो बताइएगा, मैंने आपसे मालूम किया है सर, अभी मौसम कैसा है दिल्ली NCR का?
1: मौसम ठीक था सुबह तो, आज जो है धूप निकला हुआ है, गर्मी है थोड़ी, उमस भरी।
0: अच्छा, उमस भरी गर्मी है, ओके। तो आप आज आपने कॉल किया है फिर मुरादाबाद में, बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: ये आज आप हमें सुना दीजिए, फिल्म परवरिश का गीत है
0: जी।
1: हम प्रेमी प्रेम करना जाने, ये सुना दीजिए।
0: ठीक है सर, ये गीत आपको सुनवाते हैं, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका भी धन्यवाद, और सभी मुरादाबाद सुनने वालों को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: बिल्कुल सर, आपका नमस्कार सभी ने एक्सेप्ट किया है, और आप ये गाने का आनंद लीजिएगा, हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद के खूबसूरत सा गीत, किशोर कुमार जी की आवाज़, साथ में मोहम्मद रफी जी भी दे रहे हैं साथ। तो सुनते हैं खूबसूरत गीत, और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्ची की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हरियाली से सजे हर
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादा 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का फर्स्ट, जी हाँ, सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आती हूँ एवरीडे आपकी मनपसंद का प्रोग्राम हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं या फिर किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो ये मौका आपके पास है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और हमें बिना किसी देरी के आप कॉल लगा सकते हैं। एंड अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो। हाँ जी नमस्ते, आपको भी अपना नाम बताइएगा सर।
1: मैं ग्राम गोविंद फोन से बाजीगरी मिस्त्री बोल रहा हूँ। मैम
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब।
1: बढ़िया है मैम, मैं आपका पुराना श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
0: हाँ जी हमें मालूम है, बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है।
1: सब बढ़िया मैम, परिवार का तो पता नहीं, मगर फोन में बात हो जाती है। मैं यहाँ हूँ नई टीरी गढ़वाल।
0: अच्छा अच्छा आप अभी वहाँ पर हैं,
1: वहाँ यहाँ पर ठंड पड़
0: उत्तराखंड
1: रही है
0: में।
1: ना, बढ़िया मौसम हो रहा है, एक नंबर ठंड।
0: अच्छा हाँ, वहाँ का वेदर तो यू नो कूल ही रहता है।
1: बारिश पड़ती है, धुआं उठता है, बादलों उसमें पहाड़ों में से और बादल छा जाते हैं, बारिश पड़ जाती है।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत जगह पर आप रहते हैं।
1: जी, गर्मी की वजह से आगे मौसम आपसे बहुत गर्मी पड़ रही है मैम,
0: हाँ जी हाँ
1: इसलिए
0: जी
1: हम नई टीवी काम करने के लिए।
0: ओके, तो बताइएगा सर आप क्या सुनेंगे आज।
1: मैम गाने की फरमाइश आज लड़कों की, इनकी कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में।
0: अच्छा तो बताइएगा पहाड़ों की कुछ और खास बात, बताइएगा कैसा लगा वहां पर जाकर।
1: बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा आ रही है, बड़ी आनंद मिल रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया
0: अच्छा
1: प्रदूषण की तो कोई बात खत्म ही है, कोई चीज ही नहीं है ऐसी।
0: चारों तरफ वातावरण है, हरियाली है ना।
1: जी, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है मैम, बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, सारी लेबर खुश है, बाकी
0: ओके
1: सारी लेबर तो यहीं पर गर्मी गर्मी यहीं कर रहा काम काम करते रहो।
0: अच्छी बात है सर, आप वहां पर आनंद लीजिएगा और सुनवाते हैं आपकी पसंद का एक खूबसूरत सा गीत।
1: हमारे श्रोता है सुनने वाले आपके,
0: आपकी हाँ जी बताएगा आपकी फ्रेंड्स।
1: ये मोहब्बत अली है, बहुत है, और मोहम्मद नबी है गोविंदपुर से, और नदीम है गोविंदपुर से, और शाहिद हुसैन है, सारी लेबर हमारी काम बढ़िया एकदम, इसलिए से नंबर लगवाया, नंबर लगवाया
0: चलिए बहुत अच्छी बात है और सभी के साथ सुनिएगा एक खूबसूरत सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गीत एंड लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए और ऐसे ही खूबसूरत गाने गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है, आपकी दोपहर को बना रही है और भी ज्यादा अमेजिंग आपके फेवरेट गानों के साथ। और कुछ गाने बड़े ही अतरंगी होते हैं, लाइक जो हमने सुने नहीं होते हैं और जब उन्हें सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, कितना खूबसूरत गाना है। तो दोस्तों, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा ट्रैक चल रहा है जो आपने सुना है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है और आज आपका सुनने का मन है, तो आप मुझे बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं बेफिक्र होकर। हाँ, मैं आपको चांस दे रही हूँ, तो जल्दी से कॉल लगाओ। नंबर मैं आपको बता रही हूँ ना, 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल दसो मैनू।
1: बहुत बढ़िया भैन जी, तुसी दसो जी।
0: असि भी बढ़िया है जी, सब वाहेगुरु जी की मेहर है।
1: मेरे इधर बनी रहे सारा ते, सारे श्रोतिया ते, सारे स्टाफ ते।
0: हाँ जी जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स देने के लिए। अपना नाम तो दसो मैनू।
1: भैन जी मेरा नाम जगदीश राय गर्ग।
0: हाँ जी,
1: मानसा तो पंजाब तो बोल रहे हैं।
0: जी जी जी जी, और पंजाब बताओ जी, पंजाब विच कैसा वेदर है उधर?
1: पंजाब विच भैन जी कल बरसात हुई।
0: हाँ,
1: थोड़ी जी आज भी हुई, मौसम काफी खुशगवार हो गया।
0: अरे वाह, क्या बात है। जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ तो आप बताते हैं हमारे यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है।
1: हाँ, कभी कभी गर्मी भी बहुत पड़ती है, पर हम दो तीन दिनों से हमें काफी राहत मिली हुई है।
0: ओके, गर्मी से भी काफी राहत मिल चुकी है, तो बताइएगा सर, इस सुहाने से मौसम में आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज, जो आपके मौसम के हिसाब से परफेक्ट हो?
1: बिल्कुल भैया जी, मौसम का ही गीत है।
0: हाँ जी,
1: तो फिल्म है जी भयानक। नाम तो जरूर भयानक है पर गीत इसका बड़ा मदरसा।
0: हाँ जी, हाँ जी, बताइएगा।
1: तो हेमलता जी की आवाज में है, उसके दो लाइनें मैं तरन्नम में बताता हूँ।
0: बिल्कुल गुनगुनाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं।
1: भीगा भीगा मौसम आया, बरस घटा धन दो। भीगा भीगा मौसम आया, बरस घटा धन दो। प्रीत का पहला नटखट सावन, देखो मचाए कैसे शो। भीगा भीगा मौसम आया, बरस घटा घनघोर।
0: अरे वाह सर, जब आप गुनगुनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमारा जो दिल है वो कहता है कि सर को थोड़ा और गुनगुनाना चाहिए। एग्जैक्टली, सभी को हमें ध्यान में रखना होता है और आप बहुत अच्छे हैं एंड सभी लिसनर्स का ख्याल रखते हैं। और
1: पूरा गीत भी मैं गा दूं, पर मैं ये सोचता हूँ कि प्रोग्राम की ये फॉर्मेट नहीं है पूरा गीत गाने का।
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। और ऐसा भी होता है ना कि अगर आप पूरा ही गाना गुनगुना देंगे तो फिर और भी श्रोता सोचेंगे ओहो हमारा नंबर कब आएगा, है ना, वो भी इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली राइट, तो ये गाना आपको सुनवाते हैं हम। आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का। और आप भी अगर कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता रही हूँ 9837896896। बस लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक यूज पर।

0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, दिस इज मी आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है हेलो फरमाइश। ये तो आप जानते ही हैं। जो न्यू लिसनर्स अभी कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, जो एप्लीकेशन के माध्यम से हमें सुन पा रहे हैं अलग अलग स्टेट में, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं। जी हाँ, ये फोन इन कार्यक्रम है। इसके लिए आपको इसमें कनेक्ट होने के लिए, हमारे साथ इस सफर को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए आपको मुझे कॉल करना होगा। एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे उनका नाम भी और उनका फेवरेट गाना भी। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, जय श्री कृष्णा, तुम केम छो?
1: हाँ जय श्री कृष्णा, मजा मचिए, तुम्हें केम छो?
0: मजा माँ, अपना नाम बताइएगा आप।
1: जी मैं कच्छ गुजरात से मैं बोल रहा हूँ, विभा भाई रबाई।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं सर आप, कैसे हाल चाल है, गुजरात के मौसम कैसा है वहाँ का?
1: हाँ अभी तो इधर का मौसम धूप निकला हुआ है और हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छा। ओके, तो अभी आप कहाँ पर हैं?
1: अभी आते हैं चले जाते हैं, थोड़े बहुत बादल आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, और बारिश का कोई संभावना नहीं है।
0: अच्छा, अभी बारिश की संभावना ही नहीं है वहाँ पर?
1: नहीं बिल्कुल नहीं है, अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है।
0: ओके,
1: तो हवा और थोड़ी बहुत गर्मी है अभी।
0: अच्छा, गर्मी है फिलहाल। तो बताइएगा सर, आप कहाँ पर हैं अभी, घर पर हैं या फिर खेतों पर हैं?
1: नहीं नहीं अभी तो घर पे ही है, अभी खेती का काम, तो अभी बारिश आएगा तो फिर थोड़ा चलेगा, आगे बढ़ेगा।
0: ओके, तो बारिश के
1: तो अभी कुछ है नहीं काम काज में, खेती के काम में से, तो अभी फिर बारिश के टाइम पे ही होगा।
0: तो अभी आप बारिश के इंतजार में हैं, राइट?
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए हम कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे।
1: मिलता है कैनाल के हिसाब से, लेकिन वो भी अभी बंद है।
0: ओके,
1: और सिंचाई का मिलता है कैनाल के हिसाब से, लेकिन वो भी बंद है, मतलब।
0: अच्छा, बारिश हो जाएगी तो हेल्प मिल जाएगी बहुत ज्यादा।
1: बारिश होगी तो उसके हिसाब से फिर खेती में काम चालू होगा, जब तक बारिश नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा।
0: हाँ जी, एग्जैक्टली राइट सर। तो आप बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे सर?
1: हाँ मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई।
0: हाँ जी,
1: उसमें कुमार सानू की आवाज में गाना है एक, चले आए फिर भी तेरी दर पे चले आए, ऐसा गाना है ना,
0: तेरी दर पे सनम चले आए।
1: हाँ जी, तेरे दर पे सनम चले आए, तू ना आया तो फिर भी हम चले आए।
0: हाँ जी, बहुत प्यारा ट्रैक है। और कुछ कहना चाहते हैं आपसे?
1: हाँ मैं बस अपने जो रेडियो सुनने वाले मित्र हैं उनके नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल बताइएगा।
1: तो हमारे धीरज भाई रबारी है, किरीट भाई है, हिरेन भाई है और अफजल भाई है, ये सब हमें मिलकर सुनते रहते हैं आकाशवाणी रेडियो।

0: कार्यक्रम होते हैं।
1: हाँ जी।
0: और उसके हिसाब से हम एक दूसरे को जो जुड़े रहते हैं तो बातचीत करते लेते हैं कि आज मैंने इधर फरमाइश की थी, मैंने इधर अच्छा सा प्रोग्राम सुना।
1: अरे
0: तो मुरादाबाद का भी प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलता है और कभी मतलब आप काफी टाइम के बाद मैं जुड़ा हूँ तो
1: हाँ
0: मतलब जो अपने सुनने वाले हैं उनका भी मतलब नंबर आना चाहिए ना,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे सुनते रहते हैं लेकिन जो सभी बातचीत करते हैं बढ़िया सा मजा आता है सुनने में, और लोगों का भी जो बातचीत होता है उनकी फरमाइशें होती है सुनने में बहुत बड़ा मजा आता है।
1: अच्छा लगता है
0: जी बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल। अब
1: धन्यवाद
0: अगर हम
1: आपने।
0: फिर इसे रोज रोज करेंगे तो फिर नहीं मजा आएगा ना,
1: हाँ
0: दूसरे का
1: जी
0: भी फरमाइश दूसरे की बातचीत भी सुननी जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सर, और अच्छा लगता
0: जी
1: है कि जब हम अपनी बातें भी कहते हैं सामने वाले की बातें भी सुनते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये आकाशवाणी का तो ये तो महत्व है कि
1: जी बिल्कुल
0: सुनो और सुनाओ और सुनने
1: सर।
0: पहले, तो ऐसा ही ये इसका जो है ऐसा ही होता है।
1: जी बिल्कुल, कार्यक्रम यही है और इसीलिए कार्यक्रम को खूबसूरती से बनाया जाता है
0: कि
1: सर।
0: अपनी मत सुनाते रहो, दूसरों को भी सुनो थोड़ी
1: हाँ
0: बहुत, क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत तो अपना सुनना
1: बिल्कुल
0: जरूरी है ना,
1: बिल्कुल,
0: और
1: सभी
0: इसमें
1: की
0: से थोड़ी
1: बातें।
0: बहुत अपन को मतलब जो जानकारी भी मिलती रहती है, ऐसा बात नहीं है, रेडियो में जो जानकारी मिलती है सचोट और मतलब स्पष्ट मिलती है, बाकी तो अभी सोशल मीडिया है उसके अंदर तो कितना सच है कोई जानता नहीं है, लेकिन जो आकाशवाणी है रेडियो एक माध्यम ऐसा है जो 100% सच्ची होता है, उसमें वो ज्यादा वो मिलावट नहीं होती है, समझो।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने
0: हाँ
1: सर, एकदम जेन्युइन चीजें होती हैं
0: जी
1: जी। और आपने कॉल किया, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद कॉल करने
0: जी
1: के
0: जी
1: लिए।
0: धन्यवाद
1: सुनवाते हैं
0: धन्यवाद बहन
1: प्यारा
0: जी
1: सा गीत,
0: जी
1: तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर की पसंद का एक खूबसूरत सा गीत, कुमार सानू जी की आवाज़ में अमेजिंग ट्रैक, और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रयास कर रहे हैं एंड बस आपका कॉल लग जाएगा एवरीवन, शायद आप ही हमारे शो के नेक्स्ट कॉलर बन जाएं, बस आप ट्राई करते रहिएगा।

0: 不交，不交。
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986/05/2026 जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। दिस इज योर आरजे खुशी। एवरीवन, वक्त हुआ है 4:04 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, और हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो बिना किसी देरी के उनसे बात करते हैं ऑन एयर। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप बताइएगा अपने बारे में। जी, ओके।
1: आज मैम गाना सुनने के लिए मैंने फोन किया था।
0: या आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है या पहले भी आप कर चुके हैं कॉल?
1: इससे पहले मैं एक बार और कर चुका हूँ।
0: अच्छा, एक बार ही और किया। ओके सर, तो कैसा लगता है एफएम मुरादाबाद जब आप ऑन द वे कार में होते हैं, रेडियो सुनते हैं, कैसा फील होता है?
1: बहुत अच्छा लगता है मैम, सफर का पता नहीं चलता।
0: एग्जैक्टली राइट, सफर और भी ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, एंड इंटरेस्टिंग भी होता है क्योंकि कॉल्स भी लिसनर्स की आती हैं, गाने भी यूनिक होते हैं, कुछ नए कुछ पुराने।
1: हाँ जी,
0: तो सर आप मुझे बताइएगा आज कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम एक मूवी है हासिल।
0: हाँ जी,
1: उस मूवी का एक गाना है आंखें भी होती हैं दिल की जो।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सिलेक्ट किया है। वैसे ये गाना मतलब आपके जहन में कैसे आया कि आज यही ट्रैक मुझे सुनना है, कुछ रीजन है स्पेशल?
1: मैं जो गाने सुनता हूँ वो थोड़े से मतलब मेलोडियस होते हैं, और मुझे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज बहुत अच्छी लगती है।
0: ओके,
1: गाने सुनता हूँ अच्छा लगता है।
0: अक्सर आप ज्यादातर उन्हीं के गाने सुनते हैं राइट?
1: हाँ मैम, उनके गाने मैं सुनता हूँ, कुमार शानू, सोनू निगम, ये गाने मुझे ज्यादा अच्छे लगते।
0: ओके,
1: नए गाने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते, अरिजीत सिंह के गाने अच्छे।
0: हाँ जी, उनके तो सभी फैंस हैं। वैसे अच्छा लगा आपसे सब बातचीत करके, थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। एंड ये आपकी पसंद का अमेजिंग ट्रैक आपको सुनवाते हैं, आपकी सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका, मोस्ट वेलकम, नाइस टॉकिंग टू यू। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक। एंड अगर आप भी ऑन द वे समय कार में हैं, सफर कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा, और हाँ अपनी निगाहें चारों तरफ रखिए, इधर भी उधर भी इधर भी, मतलब फोकस करके गाड़ी को चलाना है, लेकिन चारों तरफ ध्यान से देखना भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करने लगते हैं कि हम सामने नहीं देखते हैं, आसपास नहीं देखते हैं, फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो मैं कहती हूँ आपसे कि आप सावधानी के साथ गाड़ी चलाइए, एंड पानी पीते रहिए, और ये चेहरा जो इतना क्यूट सा, इतना प्यारा सा है ना, इस पर प्यारी सी स्माइल ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप सब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब गाना सुन लीजिएगा, मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, ठीक है? मैं लौट कर आती हूँ अभी।
2: एक काम करो।

हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, आपका वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आपने अभी ये अमेजिंग ट्रैक सुना अभिजीत जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। और सच ही तो है ना दोस्तों, हर एहसास को अल्फाज नहीं मिलते, कुछ बातें होठों तक नहीं आती लेकिन आंखें उन्हें बयां कर देती हैं। बड़ी खामोशी से आंखें हमारी जो हैं वो सब कुछ कह देती हैं, कभी खुशी कभी प्यार कभी इजहार, आंखों में वो सब आंखें वो सब कह जाती हैं जो जुबान अक्सर कह नहीं पाती। अगर आज आपकी आंखों में भी किसी के लिए कोई अनकही बात है जो यकीन मानिए दिल तक पहुंचने के लिए हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती है। कुछ रिश्ते दिल से सीधा दिल तक कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे आपका और हमारा रिश्ता है। देखिए ना श्रोताओं, हम यहाँ से बोलते हैं और आप वहाँ से कॉल लगाते हैं, हम यहाँ से कोई प्यारी सी बात बोलते हैं और आपका जो दिन है वो खूबसूरत हो जाता है, अमेजिंग हो जाता है। दिल से दिल का रिश्ता ही तो है, हम मुस्कुराते हैं तो आप भी मुस्कुरा उठते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानूंगी मैं उनकी फरमाइश क्या है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो सर, किस साइड से कोई भी मुझे आवाज

नहीं सुनाई दी है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हाँ मैंने एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो एक ट्रैक मेरी पसंद का, आप इंजॉय कीजिएगा। बस मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड एक खूबसूरत से ट्रैक के बाद मैं आपसे मिलूँगी। बस आप जब यूं ही मुस्कुराते हैं ना, बेवजह मुस्कुराना भी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि वजह बहुत महंगी होती है और मुझे लगता है कि मुस्कुराना सबसे स्पेशल होता है, सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तो बिना वजह भी कभी कभी मुस्कुरा लिया करो, जैसे अभी आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं।

हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का आरजी खुशी पूरे दिल से स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और अभी आपने ट्रैक सुना, बहुत ही प्यारा था, रेखा भारद्वाज जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। एंड अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है, हम उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपके? हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। आप बताइएगा, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं आप लॉन्ग टाइम के बाद। ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप, किन के साथ सुनना चाहते हैं? सॉरी, ओके, तो सभी दोस्तों के साथ आपके सुनवाते हैं कि धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं अयूब जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा गाना। और अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश है ट्रैक सुनने की, आप सोच रहे हैं बहुत देर से कि कॉल लगाएं या ना लगाएं, क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहती हूँ इतना मत सोचिए, फटाफट से फ़ोन लगा डालिए, कॉल उठाने के लिए खुशी यहाँ पर बैठी है ना। नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। और जब एक बार आप इस शो में कॉल लगाएंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली इस शो से प्यार हो जाएगा, पर आप रह नहीं पाएंगे इसे सुने बिना, ये तो मैं जानती हूँ। चलो अभी गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ बस।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
2: जन जन तक पहुंचा संदेश।
3: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए आप रफ्तार रफ्तार कॉल मत कीजिए, फास्ट फास्ट कॉल कीजिए। अगर आप जल्दी से कॉल ट्राई करेंगे तभी तो आपका जल्दी कॉल लग पाएगा ना एवरीवन। अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना सोनू निगम जी साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में, अमेजिंग ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से और जानेंगे उनकी क्या फरमाइश है। हेलो फरमाइश।
1: फरमाइए।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। काम भी ऐसा चल रहा है, थोड़ी गर्मियों में दिक्कत आ रही है घूमने फिरने में जरा।
0: हाँ जी हाँ जी, गर्मी तो है लेकिन कोई बात नहीं सर, आप अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और बताइएगा आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: आज मैं गाना सुनूंगा, फिल्म का नाम है साजन पुरानी।
0: हाँ जी,
1: और गाने के बोला साजन साजन पुकारूं गलियों में, फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में।
0: ठीक है सर।
1: जी मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा।
0: जी जी जी बताइए।
1: हाँ, जैसे मेरे परिवार के सदस्य हैं मीना, मुन्नी, पवित्रा, अजय, आचल, आकांता, आकाश और छोटा सा मासूम है देव व्रत।
0: ठीक है सर, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं ये ट्रैक। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी साजन, जो 1969 में आई थी। लता मंगेशकर जी और साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब जी की खूबसूरत सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। बस मैं लौट कर आती हूँ इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और शो तो आप जानते ही हैं चल रहा है, आप सभी का फेवरेट हेलो फरमाइश। एंड हमारे साथ में अभी एक लिसनर और जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे उनकी पसंद का एक प्यारा सा गीत। हेलो फरमाइश। हेलो जी सर, क्या नाम है आपका? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अपना नाम बताइएगा सर। जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप? जी बताइएगा सर, आप कौन सा गीत सुनेंगे आज? ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, सर की पसंद का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं और आप मुझे कॉल लगा सकते हैं, नंबर मैं आपको बताती हूँ 98-300-96-896। एंड सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
5: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
6: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
5: पर पापा।
6: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
8: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
7: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
9: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
7: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो सुन रहे हैं आप अपना फेवरेट हेलो फरमाइश, जहां पर आप कॉल लगाते हैं, अपने पसंद के गाने सुनते हैं और बातचीत करने का भी अवसर आपको मिलता है। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: बनारस से मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बस आप लोग की दुआएं हैं, ठीक ठाक हैं। जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो? वैसे तो आप ठीक ठाक हो, मुझे पता है।
0: हाँ जी, आई एम फाइन सर। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा बनारस का मौसम कैसा है?
1: गर्मी है, रात में थोड़ा सी हवाएं चलता है, फिर एकदम उमस भरा मौसम हो जाता है।
0: ओके, तो अभी राइट नाउ
1: दो तीन दिनों से एकदम हवा एकदम चल ही नहीं रहा है, उमस है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, तो अभी आप
1: मौसम बेहतर।
0: अभी आप चलकर कहाँ जा रहे हैं?
1: मैं थोड़ा मार्केट आया था और कान में ब्लूटूथ लगा के आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
0: ओके, शो सुन रहे हैं आप, तो शॉपिंग करने के लिए आए हैं?
1: नहीं, थोड़ा आज काम नहीं था तो थोड़ा मार्केट निकले हुए थे सामान लेने कुछ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बताइएगा आप कौन सा ट्रैक सुनेंगे सर आज?
1: सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं।
0: ओके,
1: ये गाना आलिया खान जी को डेडिकेटेड।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा गाना कुमार सानू जी की आवाज़ में। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 98-378-96-9988-378-96-896। ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर बातचीत कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना भी सुन सकते हैं।

हेलो, गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली लिसनर्स। वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और दोस्तों, अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो फरमाइश।

ये मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों करते हैं हमारे लिसनर्स? इतनी मेहनत से कॉल लगाते हैं, कॉल रिसीव हम कर लेते हैं और बाद में वो बात ही नहीं करते हैं। चलिए, कभी कभी हो जाते हैं नेटवर्क इशू, लेकिन हर बार ही ऐसा होना, मुझे लगता है शायद लोग जो हमारे लिसनर्स हैं वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कॉल लगा के साइड में मोबाइल को रख देते हैं और भूल जाते हैं कि हमने फ़ोन भी लगाया था। हाँ, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एंड नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करें तो अपना फ़ोन अपने पास ही रखें, मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, फ़ोन लगा कर इधर उधर फ़ोन मत रखिएगा, एंड फ़ोन के पास ही रहिए, ताकि आपका कॉल जब हम रिसीव करें, ऑन एयर आपसे बात करें, तो आप भी टाइम पर हमसे बात कर पाएँ, क्योंकि हमें भी नहीं अच्छा लगता है आप इतनी मेहनत से कॉल लगाते हैं और बाद में आप बात नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैं मिलूँगी आपको सुबह, टुमारो मॉर्निंग 10 से 12। जी हाँ, सुबह हम टुमारो मॉर्निंग आपसे बात करेंगे, एंड तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ जाने की अनुमति। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपना, अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुशी को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए।

0: के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एनेली हेनाम्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
2: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akash.
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन।
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
6: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें jenhe.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
5: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43986105/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
7: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
8: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:14 हो चुके श्रोताओं, और आप आज रीना के साथ कनेक्ट है। ढेर सारी बातें करने वाले हैं आप सभी के साथ। भैया आज गर्मी, ओ माय गॉड, पूछो मत। इतनी गर्मी है कि बाहर से आने के बाद बॉडी के अंदर एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं रहती है। बस एक ही काम करता है, कुछ कोई भी मत कुछ कहो, बस ठंडा पानी मिल जाए और पानी पीने के बाद बस एक ही मन करता है कि बस सोने का मन करता है, और सोने के बाद कोई उठाए ना, बस इतना होना चाहिए। लेकिन इस गर्मी में ना बाहर जा रहे तो अपना ख्याल रखिए, और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ORS अपने साथ रखिए, क्योंकि जब भी आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा लगता है कि भैया एनर्जी लो हो रही है ना, तो आप ORS पी सकते हैं, जिससे आपको बॉडी में एनर्जी मिलती रहती है। और 2 घंटे ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए एक गाना बहुत ही प्यारा है, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं और लौट कर आते हैं जिस स्टेशन पर। ढेर सारी बातें करेंगे।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhip.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398-61/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।

0: 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है अर्जुनीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिस समय की बात करूं तो 5:22 हो चुके हैं श्रोताओं, और इस गर्मी में आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि इस गर्मी में ना आप जब मेहमान घर पर आए, मतलब कि कोई किसी चीज़ को पूछे ना पूछे, लेकिन पानी को ज़रूर पूछिए। घर पर आपके मम्मी पापा जॉब से आते हैं, उनको एक गिलास पानी के लिए पूछिए, क्योंकि इस गर्मी में हम ना मोस्टली यही जब बोलते हैं कि अच्छा चाय बना के लाए, लेकिन गर्मी में बस एक गिलास पानी काफ़ी है। आप बाहर जा रहे हैं, आप अपने साथ बॉटल लेकर जाए, और साथ ही साथ आप नारियल पानी पीजिए, छाछ पीजिए, क्योंकि इस गर्मी में यही आपकी बॉडी को, तासीर को ठंडा रख सकता है। आपको अंदर से ठंडक फील होगी, और साथ ही साथ आप बाहर जा रहे हैं तो डार्क कलर के कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि जितना आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे उतनी ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी। इसीलिए लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको गर्मी से राहत मिलती रहे। और साथ ही साथ आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अभी ऑन द वे है, और जहाँ पर ट्रैफिक आपको ज़्यादा मिले तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर 9837896896, ताकि उस रूट से और जाने वाले हैं वो भी ट्रैफिक जाम से यानी कि थोड़ा सा बच सके और अपने घर यानी कि जल्दी पहुंच सके। सो, अगला गाना भी बहुत ही बिंदास है, उसके बाद कनेक्ट होते आप सभी के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि पिटारे में आज है बहुत सारा अपडेट।

या कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई चीटिंग वाला केस बेबी, शरीफ हूँ मैं।

0: 겜지.
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 5:31 हो चुके हैं श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि इवनिंग शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और 21 तारीख को, यानी कि बहुत सारे डेज है, फादर्स डे, योगा डे। योगा डे से मुझे याद आया कि हम इंसानों के पास ना आजकल के समय में, यानी कि वक्त बहुत कम पड़ जाता है। वक्त इसलिए कम पड़ जाता है क्योंकि हम सुबह तक 8 बजे तक सोते रहते हैं, रात को लेट सोते हैं, गर्मी लग रही है, ऊपर से फ़ोन चलाना है, और इसी चक्कर में ना हम अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखो, अगर नींद पूरी नहीं होती ना तो पूरा दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, आलस भरा वाला दिन रहता है, लेजी लेजी फील होता है। तो नींद भी बहुत ज़रूरी है, और नींद के साथ साथ देखिए जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। सो 21 तारीख को योगा डे है, तो इस योगा डे अपने आप से एक संकल्प लीजिए कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है अपने जीवन में, बीमारियों को टाटा बाय बाय बोलना है, तो खुद के लिए आधा घंटा हम ज़रूर निकालें। और साथ ही साथ फादर्स डे, यानी कि 21 तारीख को, तो आपने बहुत सोचते हैं कि भैया हमारे पास या तो पैसे नहीं है, पैसे है तो समय नहीं है, समय है तो पैसे नहीं है, अपने फैमिली वालों के साथ एंजॉय करने के लिए, है ना। लेकिन जो FM मुरादाबाद रेडियो है, आपको आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आ गए हैं। अब गोल्डन चांस ये है कि आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आपने ज़रूर की होगी अपने डैडी के लिए, कि हम अपने पापा के लिए क्या करें, कुछ स्पेशल करने के लिए हम सब पहले से रेडी करके रखते हैं। अगर आपके पापा को मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन है आपके पापा, तो आप हमारे रेडियो से टिकट जीत सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, मैं जैसे आप सभी से, ये मतलब 6:30 के बाद मैं क्वेश्चन एक लेकर आऊँगी, बहुत ही शानदार पहेली लेकर आऊँगी, वट एवर जो भी मैं लेकर आऊँ सभी के लिए। अगर आप उसमें सबसे पहले और राइट आंसर पहुँचाते हैं तो आप बन जाते हैं विनर, और अपने फादर जी को मूवी दिखाने आप ले जा सकते हैं, उनके लिए एक सरप्राइज़ आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस आपको ऑफिस आना पड़ेगा, टिकट लेकर जाइएगा, और 21 जून को आप फादर्स डे पर सेलिब्रेट कर सकते हैं डैडी के साथ, या मूवी देख सकते हैं अपने पापा के साथ। तो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर टिकट जीते, तो आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए 6:30। ठीक, मैं आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आने वाली हूँ, जिसका आंसर आपने क्या करना है जी, अरे पहुँचाना है मेरी जान। लेकिन मेरे पास ना कुछ मैसेज भी आए हैं, तो एक बार मैं सोचती हूँ कि शामिल कर लेते हैं। ये जो मैसेज आते हैं हमारे पास, गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि FM सुनते रहिए आरजे रीना के साथ, और रीना मैम बहुत गर्मी है, कृपया करके बारिश करवा दीजिए। ओह माय गॉड, बारिश करवाना है आपके लिए, क्या करें जी, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है बारिश। अब भगवान जी से बस विनम्र विनती कर सकते हैं कि बारिश हो जाइए। प्रिंस जी का मैसेज आता है, हेलो रीना जी, हेलो जी, कैसी हैं आप, आई होप कि आप बहुत अच्छी होंगी। और इस टाइम मुझे पता है कि आप ऑफिस से घर के लिए रवाना हो चुकी हैं, और बस पतिदेव के साथ घर चलो भैया, क्योंकि यही समय होता है। देखिए, अगर आपके ज़िंदगी में आप जॉब कर रहे हैं, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो समय नहीं मिल पाता एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब ऑफिस से आते हैं, कुछ घंटे होते हैं हमारे साथ कि हम इंजॉय कर सके, दूसरे के साथ बात कर सके प्यार से, कुछ मतलब खाना पीना खा सके। चलिए जी, फिलहाल एक और प्यारा सा गाना, सो इस गाने को एंजॉय करते हैं, और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, जहां करेंगे ढेर सारी बातें। और 21 तारीख भूल मत जाइएगा, क्योंकि 21 तारीख को है फादर्स डे, म्यूजिक डे, योगा डे। तो आप अपने फादर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मूवी दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप हमारे रेडियो से जीत सकते हैं टिकट। उसके लिए आपको राइट आंसर पहुंचाने पड़ेंगे ना मेरे जान। चलिए फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में क्या करके, अरे बाहर बन के ही आते हैं हर कोई, और बाहर को ऐसे एंजॉय करना चाहिए। चलिए फिलहाल गाना बहुत ही शानदार। हाँ। राजा हिंदुस्तानी मूवी से ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। चांद तारे फूल तुमसे अच्छा कौन है। सही बात है, जो इंसान आपको अच्छा लगने लग जाते हैं ना, उससे बेटर, उससे अच्छा कोई और नहीं लगता है। और आज की तारीख हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि 17 जून है, और समय की बात करूँ तो 5:47 हो चुके श्रोताओं। और हर डे हमारे लिए कुछ ना कुछ खास ज़रूर होता है, क्योंकि हमें हर रोज़ जीने का मौका मिलता है, अपने ज़िंदगी को इंजॉय करने का मौका मिलता है। हम अक्सर यही कहते हैं ना कि हमें चांस नहीं मिलता, लेकिन हर सुबह एक किरण आपको नई रोशनी, एक नया जीवन देती है जिसको आप अच्छे से इंजॉय कर पाओ। सो आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि आज मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम, यानी कि जो खेत हैं वो बंजर हो जाते हैं, हम जिसकी देख रेख नहीं करते हैं, वह फसलों की उपज है उसमें दिक्कत आने लगती है, तो आज उसी का डे मनाया जाता है। यानी कि उपजाऊ जमीन का धीरे धीरे बंजर बन जाना, लगातार पेड़ों की कटाई, पानी का अत्यधिक उपयोग और मिट्टी की अनदेखी इसके बड़े कारण हैं। इसका सीधा असर हमारी खेती, फसलों और किसानों की मेहनत पर पड़ता है। अगर हम हर वर्ष जल का संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और खेतों की मिट्टी का सही रख रखाव करें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को हरा भरा रखा जा सकता है। याद रखिए, मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हमारी रोटी, हमारा भविष्य और हमारी पहचान है। सो अपनी अब पहले की अगर मैं बात करूँ तो खेतों में ना इतनी, मतलब जो खाद है वो नहीं डाला जाता था, मतलब नेचुरल खाद डाले जाते थे, जैसे गोबर वगैरह वाला जो खाद होता था वो डाला जाता था। लेकिन अब जो केमिकल वाले खाद है, जिससे खेतों में जो फसलें हैं कई जगह पर, तो आप मतलब कुछ ऐसी फसलें जहाँ पर उग भी नहीं पाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और खेतों में खाद जो है वो बहुत, मतलब डालिए कम क्वांटिटी में, ताकि इससे मिट्टी को भी नुकसान न पहुंचे, और जो फसल उगाए जा रहे हैं वो भी अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्म ना हो बल्कि अच्छा रहे। सो इसका ध्यान रखना है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हमें ना एक संकल्प लेना चाहिए। देखिए, हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो क्या करना है, पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे और धरती माँ को बंजर होने से बचाएंगे। क्योंकि अगर धरती बंजर हो गई तो सोचिए कुछ फल सब्जियाँ अनाज उपज नहीं हो पाएगी, फिर सब वही परेशान हो जाएंगे। जब राशन ही नहीं होगा, खेतों में उपज ही नहीं होगी, तो क्या करेगा इंसान। इसीलिए हमारी मतलब फ़र्ज बनता है कि हम उनकी देख रेख करें। और यूं ही आर्जुरीना के साथ कनेक्ट रहिए, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। प्यारे प्यारे आप सभी के मैसेज आ गए हैं, वो भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक है। और श्रोताओं, आपको याद है ना, 20 तारीख यानी कि 21 तारीख फादर्स डे पर क्या होने वाला है। आप हमारे रेडियो पर अगर आप

हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: राणा जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर।

0: क्या बात है जी, कुछ गाने ना बड़े शानदार होते हैं, और ये गाना एक टाइम पर मुझे इतना ज़्यादा फेवरेट था ना कि मैं बहुत बार इस गाने को सुनती थी। और आज जब मैंने गाना में सर्च कर रही थी तो मेरे को एकदम दिख ही गया, मैं क्या चलो आज प्लेलिस्ट में अपने इस गाने को ज़रूर हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि गाना सच बताऊँ बहुत प्यारा था मेरे लिए। और चलिए आप सभी के जो मैसेज आ रहे हैं उनको शामिल करते हैं, क्योंकि मैसेज भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सो मैसेज की बात करूँ तो नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और आप प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन से पेश करती हैं, थैंक यू सो मच जी, और गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू कुमार सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। और अगले मैसेज की बात करूँ तो अगला मैसेज आता है हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? आई होप कि आप सभी श्रोताओं बहुत अच्छे होंगे, और इस गर्मी में अपना ध्यान रखिए। और आगे लिखते हैं, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, गाने एक से बढ़कर एक आप प्ले कर रही हैं, थैंक यू सो मच, जो कि बेहद पसंद आ रहा है, थैंक यू जी। और लिखते हैं, आज विश्व मरुस्थल दिवस है, इसके बारे में रीना जी आपने बहुत सी जानकारियाँ दी कि किस तरह से ज़मीन को बंजर होने से बचाया जाए, और जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो उस पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, अनाज नहीं उपाया जा सकता है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन ही रख पाएगा, क्योंकि इंसान अगर हम खेती करते हैं और उस पे बिना खाद की जो फसलें होंगी, नेचुरल खाद डालिए, पहले गोबर की जो खाद डाली जाती थी बहुत अच्छी होती थी, तो अभी भी उसी को डालिए। और आज इनफैक्ट पहले के टाइम में हर घर में आप देखते थे मोस्टली गाय भैंस जरूर होते थे, लेकिन अब वही खाद महंगे बिकने लगे हैं। तो हर चीज़ का एक समय होता है और वो अपने टाइम पर ही चमकता है। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और न्यूज़ का भी टाइम हो गया है श्रोताओं, फिर लौटेंगे आप सभी के साथ, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत में लौटेंगे 6 बजे शाम, और करेंगे ढेर सारी बातें, और आप सभी के लिए कड़क सवाल भी तो लेकर आना है, क्योंकि फादर्स डे बहुत नज़दीक है। सो हर किसी ने प्लानिंग की होती है, भाई पापा के लिए कुछ तो करना है, जो कि फादर जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, हम उनके लिए अगर थोड़ा सा भी करें ना, वो भी बहुत कम होता है। तो चलिए फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद न्यूज़, फिर कनेक्ट होते हैं।
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ। यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चूके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janib.upda.in पर जाकर, या कॉल करें 6396176417 पर। यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 43981/05/2026, जनहित में जारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

नहीं है आए जी। हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ। अहमदाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:07 हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और इसी बीच में आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ वेदर अपडेट। अब वेदर अपडेट में ये है भैया कि ये बताया जा रहा है कि दिल्ली, यूपी, बिहार में, यानी कि आज 17 जून है, और आज बताया जा रहा है कि मौसम हल्का सा करवट ले सकती है, बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, संभावना जताई जा रही है, आए ना आए वो तो पता नहीं, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि बारिश आ सकती है। अगर बारिश आ जाए तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि इस गर्मी से थोड़ा सा हमें राहत मिल जाए। और जो आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे हैं ना, अरे मैं कहती हूँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जब तक आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं, बातों का और गानों का मज़ा नहीं आएगा आपको। चाहे आप घर पर सुनिए, कहीं भी सुनिए, जब तक वॉल्यूम बढ़ाएंगे नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला है। और आपसे कह रहे हैं मैंने कि हाँ सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, अरे इधर उधर नहीं देखना है आपको। अरे मैं बोल रही हूँ आपसे, अरे हाँ जी आपसे ही बोल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ध्यान से हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है तो मैं नहीं लगाऊंगा, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इसमें किसी कोई किसी को कुछ नहीं पड़ी होती है कि आप ठीक है ठीक नहीं है, लेकिन हम हैं ना मेरी जान आपके ध्यान रखने के लिए, इसीलिए हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। हम कह रहे हैं ना इसीलिए, क्योंकि रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना, और क्योंकि हम भी सेफ रहते हैं और आप भी होले होले घर पहुंच जाते हैं। जो गाड़ियों में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ भैया गाड़ी में थोड़ी देर बैठने के बाद ना एसी चलाओ तो मतलब सही हो जाता है, लेकिन वही जो बाइक पर बैठते हैं, सोचिए धूप में गाड़ी खड़ा कर देते हैं और जब बाइक पर बैठते हैं, वो तो आप ही बता सकते हैं, मेरे को तो पता है क्या फील होता है भैया। इसीलिए अपनी गाड़ी को भी छांव में रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जितना आप छांव में अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे उतना ही बेटर है आप सभी के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए और गाड़ी ठीक से चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि गर्मी भी उतनी ज़्यादा है। और जरा इन रिक्शा वाले भैया को भी थोड़ा जगह दे दो यार। चलिए फिलहाल एक प्यारे से गाने के बाद लौट कर आते हैं आप सभी के बीच, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कितने भी नहीं जाइएगा जी, क्योंकि लेकर आने वाले आप सभी के लिए क्या अरे कड़क सवाल जो लेकर आने वाले हैं। अगर आप इधर इधर इधर उधर आपका ध्यान हुआ, ध्यान भटका, तो समझिए कि आप क्वेश्चन नहीं सुन पाएंगे और फिर टिकट भी नहीं जीत पाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल एक गाना जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, ये ठंड के मौसम में मैं बहुत ज्यादा सुनती थी। नशा किस चीज का है, चाय या फिर शिकंजी? मैसेज करके बता सकते हैं आप जी, क्योंकि गर्मियों में मुझे सबसे ज्यादा नशा चढ़ता है, वो भी शिकंजी और नारियल पानी। अरे देखो, अगर आपको पुण्य कमाना है ना तो बस एक नारियल पानी या नींबू पानी भेज दीजिए। चलिए जी फिलहाल गाना एंजॉय करते हैं।

0: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ।
1: यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी। अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.upda.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर।
0: यूपी रेरा पंजीकरण संख्या UPRERA PRJ 4398/01/05/2026। जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। सच में जो कुछ गाने होते हैं ना भैया, वो थोड़ा सा समझ के परे हो जाते हैं कि दो पैग मारो और भूल जाओ। सोचिए अब लड़कों की बात की जाए, यहाँ पर लड़कियों की बात की जाए, है ना, तो क्या होता है कि कोई गम हुआ तो दो पैग मार लेते हैं, लड़के बोलते हैं कि यार सारी टेंशन छूम अंतर हो जाती है। लड़कियाँ क्या करती है यार, मतलब मुझे लगता है कि पीने का ना बहाना होना चाहिए कि बस टेंशन हुआ पी लिया, बहाने मतलब टेंशन ख़त्म, लेकिन पीने के बाद जो नशा उतरता है फिर टेंशन नहीं होती क्या? इसीलिए कुछ चीज़ें गलत चीज़ें हैं उसको अवॉइड करिए और खुश रहने का ज़िंदगी में, सच बताऊँ तो, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में जितना आप इंजॉय करते रहेंगे, खुश रहेंगे, उतने आपके लिए बेटर होगा। ठीक है जी, फिलहाल बात करते हैं, क्या बात करेंगे, आज 17 जून है और 17 जून को क्या हुआ है अभी बताते हैं।

तो भैया आज वनडे सेकंड मैच में यानी कि हमारी इंडिया टीम ने आज अगर मैच की बात करूं तो भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो मैच हुआ है जिसमें हमारी इंडिया टीम ने 402 रन बनाए और 6 विकेट से जीत हासिल कर ली है। अगर आप भी है मैच देखने के दीवाने तो भैया देखिए मैच देखने वालों के लिए ना मतलब थोड़ा सा भी अपडेट पता लगे अच्छा आज इंडिया जीत गई है मजा आ गया फिर तो पार्टी कर लेते हैं ना जी पार्टी शार्टी कर लेते हैं क्योंकि पार्टी शार्टी करने का मजा ही अलग होता है और जब टीम इंडिया जीतती है तो भाई उसका जश्न मनाना तो बनता ही बनता है क्योंकि जब टीम इंडिया मैच में मैदान में उतरती है ना तो सिर्फ जीत उनकी उनकी नहीं पूरी हिंदुस्तान की जीत होती है और उनके साथ जो करोड़ों लाखों देशवासियों का उनका जो साथ होता है वो अलग ही लेवल का होता है। कहते हैं ना एक मतलब जो आपकी जो ताली की जो फटकार होती है ना उसे देखकर एक अलग ही जुनून एक अलग ही जज्बा आता है इंसान के अंदर। जो हारता हुआ इंसान भी कहता है कि यार ये मेरे लिए है तालियां तो जीतो। तो इसीलिए कभी आप किसी के साथ रहे और आपको लगे कि ये थोड़ा सा डगमगा रहा है वहाँ पर आपकी ताली होती है जो वो जीत का जश्न बना देती है। सो हमारी फाइनली इंडिया टीम जीत गई है और एक और शानदार गाना उसके बाद आप सभी के बीच में लेकर आऊँगी। क्या जी अरे कड़क सवाल जिसका आंसर अगर आप देते हैं तो आप जीतते हैं टिकट मूवी देखने के अगर है आप दीवाने और 21 तारीख के लिए मतलब आपको टिकट मिलेगा क्योंकि 21 तारीख को है फादर्स डे और फादर्स डे पर भैया पापा के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो करते ही हैं ना। तो अगर आप भी मूवी दिखाना चाहते हैं अपने पापा जी को तो टिकट तो आपने जीतना पड़ेगा और उसके लिए हमें राइट आंसर पहले भेजना पड़ेगा मेरी जान थोड़ा सा सोच के चलिए फिलहाल ये गाना उसके बाद लौट कर आते कुशु कुशु कुशु गाना सुनते प्यारा गाना

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है। मम्मी डैडी है नहीं घर पर, कुछ तो करेंगे मिलकर, है ना। लेकिन सच बताओ, मुझे इस गाने से नहीं एक बात याद आ गई कि जब मैं छोटी थी ना, और तो मम्मी और पापा मेरे चले जाते बाहर घूमने के लिए, है ना। मैं और मेरे भाई घर पर थे और हमने डिसाइड किया कि अच्छा, आज मम्मी पापा घर पर नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया भैया, सबसे पहले तो मेरा भाई डिसाइड करता है कि हम आज बर्गर पिज्ज़ा लेकर आते हैं दुकान से और पार्टी करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा तो खाने नहीं देते, बोलते कि जंक फूड है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और बचपन में भैया सच बताओ इतना नॉलेज होता नहीं है, जो भी मिलता है बस खा लो उसको। तो हमने क्या किया कि हमने जितने भी पैसे, मतलब मेरे भाई ने और मैंने इकट्ठे कर रखे थे ना, वो कम पड़ गए। कम पड़ने के बाद मम्मी का पर्स पर हमारा ध्यान जाता है और वहाँ से निकालते हैं हम 500 का पत्ता। और 500 का पत्ता निकालने के बाद जो हम पार्टी शार्टी कर रहे थे, मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम कि हमने एक बाइट भी नहीं खाया था अभी, और इतने मम्मी पापा प्रकट हो गए घर में। और ऊपर से ये तो बोला नहीं कि अच्छा तुमने कहाँ से पैसे लिए, कुछ नहीं, बस दोनों को दो दो झपाटे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो वो दिन हम कभी नहीं भूल पाए। मैं मेरा भाई जब भी हम एक साथ बैठे होते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि भाई मम्मी के वो दो जो लगे थे फटकार गालों पर ना, वो आज भी याद है हमें। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मम्मी पापा घर पर नहीं थे और आप दोनों भाई बहनों ने कुछ खुराफात किया होगा कि चलो कुछ बाहर से कुछ तो मंगाते हैं या बाहर घूमने ही चल लेते हैं, जब तक मम्मी पापा घर पर आएंगे हम भी पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था, यानी कि मम्मी पापा हमसे पहले पहुंच जाते हैं। चलिए, लेकिन अभी मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ क्या एक कड़क सवाल। और कड़क सवाल पूछने से पहले जो कुछ मैसेज आए वो शामिल कर लेते हैं। ये हमारे पास मैसेज आता है, जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको चाय का नशा है या फिर सिकंजी का नशा है, तो इनका कहना है आपकी बातों का नशा है हमें। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राज फ्रॉम दीनदयाल नगर मुरादाबाद से। ओए होए राज जी, बातों का नशा है, चलिए किसी चीज़ का तो नशा है आपको। और अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आजाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं और इनके दोस्त है इरशाद अंसारी जी। तो अब आप सभी के बीच बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि आपने देखिए आज तो बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। और सोच लीजिए, आपको आज टिकट, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आप जीतते हैं टिकट्स फादर्स डे के लिए, जो कि 21 तारीख को है। तो चलिए सोचिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए वरना फिर आप सोच नहीं पाएंगे यार क्या मैंने पूछा था और क्या निकल गया, वो तो जल्दी मेरी बातों से स्किप हो गया है। इसीलिए रेडियो के वॉल्यूम थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है क्या लौकी तोरी का बेल होता है या फिर पेड़। देखा, बहुत मैंने बोला था ना बहुत आसान क्वेश्चन है आज का। सो आपने क्या मैसेज हमें कहाँ मैसेज करना है, नंबर है 9837896896। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है कि आखिरकार तोरी लौकी का बेल होता है या फिर पेड़ होता है, वो पेड़ पर लगते हैं या फिर बेल पर लगते हैं, ये आपने हमें मैसेज करके बताना है जी। सोचिए और मैसेज करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम टिकट जीत जाए, तो मैसेज तो आपने करना पड़ेगा। आखिरकार लौकी तोरी का बेल होता है या फिर पेड़ होता है, क्योंकि मैं तो कल पेड़ से लौकी तोरी तोड़ कर लाई थी जी। और आप बताइए कि आप बेल से तोड़ कर लाते हैं या फिर पेड़ से। चलिए फिलहाल गाना बहुत ही शानदार पंजाबी ट्रैक

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: तन मन सुन

0: चाइल्ड फ्रेंड है लंदन से।
1: है?
0: मैं उसकी शादी में आई हूँ। और तुम?
2: उसकी शादी मुझसे हो रही है।
0: What?
2: तुम्हें वो क्या थे?
1: ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया? और ये
3: क्या है? Remember? तुमने रिप्लाई
2: किया?
3: कुछ नहीं।
4: Come, let's dance.
0: Come on.
2: Sing all night, lonely, lonely.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है अर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूं तो 6:40 हो चुके हैं श्रोताओं, और अब बात कर लेते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस गर्मी में ना चिपचिपी वाली गर्मी और ऊपर से फेस पर टैनिंग जो हो जाती है ना भैया, ओहो धत तेरी की, न कहीं आने न जाने के रह जाते हैं, बस फेस पकड़कर पड़े रहते हैं घर पर, है ना, कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ऊपर से हम पार्लर चले जाते हैं और 1,500 रुपये फूक कर आ जाते हैं, और फिर कहते हैं यार 500-1,000 रुपये तो हमने लगा दिया है, पर फेस पर फिर दूसरे दिन यही हालत हो गई है मेरे भैया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है मेरी जान, बस आपने क्या करना है कि घर में रेमेडी होती है, घर में ही आपको हर चीज़ मिल जाएगी। दही घर में ही होती है, बेसन भी घर में ही मिल जाए आपको मिल जाएगा, लेमन भी आपको घर में ही मिल जाएगा, साथ ही साथ रोज़ वाटर भी आपको घर में मिल जाएगा, और साथ ही साथ राइस पाउडर जो होता है चावल का जो पीस का जो बनाते हैं वो भी घर पर ही मिल जाता है। इनको मिक्स करना है और इसमें हल्का सा शहद डालना है। अब इनको मिक्स कर कर आप अपने फेस पर लगाते हैं ना, तो नींबू जो होता है ना, जो जितने भी आपके फेस पर टैनिंग है ना उसको रिमूव करता है, और साथ ही साथ दही जो कि बहुत फायदेमंद होता है, और ये घर पर ही मिल जाता है। सो क्यों पार्लर जाना है यार, क्यों फेस पर केमिकल यूज़ करने, बस घर के कुछ चीज़ें यूज़ करिए और टैनिंग से फ्री बिंदास रहिए। और देखिए डेली नहीं लगाना होता है, कभी पता चले भैया डेली लगाकर ऐसे रगड़ते हैं जैसे कि ओहो कपड़े को साफ कर रहे हैं ना, फेस को रगड़ना नहीं होता है जी, हल्का सा बस उसको जैसे आप उसको अप्लाई करते अपने फेस को पहले क्लीन करिए, फिर जो आपने दही लेमन और बेसन और राइस जो पाउडर मिलाया है और साथ में शहद मिलाया है उसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ा जाता है, फिर फेस को अच्छे से क्लीन करिए, फिर फेस पर अप्लाई करिए, और उसको जब वो हल्का सा सूख जाए, बिल्कुल भी नहीं सूखने देना है उसको, हल्का सा जब वो सूखे तो हल्के हाथों से उसको रब करना होता है। ये नहीं कि भैया पकड़ा और बस रगड़ दिया, रगड़ेंगे ना तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो इस गर्मी में अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और बाकी छाछ नारियल पानी पीते रहिए और हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खाते रहिए, आपके चेहरे की चमक बनी रहेगी, साथ ही साथ आप इस गर्मी से भी आपको राहत मिलेगी। और आज का कड़क सवाल जो मैंने आप सभी से पूछा है भैया, बहुत ही आसान। देखिए मैंने ना लौकी और तोड़ी का तो पेड़ ही देखा है, अगर आपने बेल देखा है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि लौकी या तोड़ी का बेल होता है या पेड़ होता है, सोचिए और फटाफट मैसेज करिए क्योंकि अब बारी आप सभी के मैसेज की तरफ है जी। नंबर है 9837896896 पर मैसेज करना है आपने और हमें बताना है कि आखिरकार क्या होता है इसका राइट आंसर। चलिए प्रीतम प्यारे वाला गाना सुनाते हैं आपको, ठीक है जी।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर साथ FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:48 हो चुके हैं श्रोताओं। और कभी कभी ना हम चोरी भी करते हैं ना, तो वो सोच समझ कर चोरी नहीं करते हैं। हम घर पर तो ये कह के जाते नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए, अकेले जा रही हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है जब गैलरी में झांका जाता है, फोन में झांका जाता है, अच्छा और ऊपर से गलती से स्टेटस लग जाए, तब पता चलता है कि बेटा तुम अकेले नहीं, किसी और के साथ गए थे। तो कभी कभी चोरी ना हमें सोच समझ कर करनी चाहिए, दिमाग यूज करना चाहिए, अदरवाइज अगर आप पकड़े गए तो बेटा तुम तो गए। ऐसा होता है जी। लेकिन अब बारी आप सभी के, यानी कि जो आप प्यारे प्यारे मैसेज आ चुके हैं उनकी बारी है, लेकिन एक गाने के बाद लौट कर आएंगे, तब बताएंगे आप सभी के राइट आंसर आया है या नहीं। फिलहाल आज का कड़क सवाल यही है कि तोरी जो होती है ना, तोरी का बेल होता है या फिर लौकी तोरी का बेल होता है या फिर पेड़, आपने ये हमें मैसेज करके बताना है। अभी के लिए एक खर प्यारा गाना सोचिए बंदे के साथ, ये गाना अब बहुत प्यारा है।

क्या बात है जी, बिल्कुल तबाही पक्की है। अभी आप सभी के आंसर से पता लग जाएगा तबाही पक्की है या फिर नहीं है। आप जीतते हैं 21 तारीख के लिए टिकट्स या नहीं। देखिए, अगर टिकट लेने आए ना आप तो खाली हाथ नहीं आने, कुछ ना कुछ लेकर आने। रीना ऐसे ऐसे मजाक करती रहती है जी। और समय की बात करूँ तो 6:54 हो चुके हैं। चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

सतवीर जी का मैसेज आता है और इनका कहना है कि तोरी और लौकी का बेल होता है। ओके, बेल होती है। चलिए जी, अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं इरशाद हुसैन अंसारी जी, और इनका कहना है कि लौकी और तुरई की बेल होती है। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो धर्मेंद्र चौहान जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि बेल। ओके, बेल होती है जी। चलिए अगले मैसेज की बात करूं तो अनिल कुमार हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रुद्रापुर से, और तोरे की बेल होती है। ओके जी, और इनका कहना है कि मैडम जी अगर जो हमने सवाल का जो आंसर दिया अगर वो सही हुई तो एक गाना सुनवा दीजिएगा। अरे अरे, आपको गाने की टिकट मिल जाएगा यार। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं। हेलो, गुड इवनिंग रीना मैम, और ये हमारे साथ रिंकू सिंह कनेक्ट होते हैं। ओके रिंकू जी, और लौकी तोरे की बेल होती है। एकता कॉलोनी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। एकता वैसे मेरी फ्रेंड की नाम है, जो कि स्कूल टाइम की फ्रेंड थी मेरी। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ मैसेज आता है सैयद शारिक अली जी का, और इनके कहना है कि बेल होती है। राइट आंसर है बेल, आंसर इज बेल। ओके, अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं निजामुद्दीन अंसारी जी मुरादाबाद से। गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जी, आज का राइट आंसर होता है लौकी और तुरई की बेल होती है, पेड़ नहीं। ओए, लेकिन मैं तो पेड़ से मतलब पेड़ से लौकी और तुरई तोड़ के लाई हूँ, तो मतलब पेड़ ही होता होगा ना, बेल कैसे हो सकता है। चलिए फिलहाल मैं अगले मैसेज की तरफ बढ़ती हूँ। ये हमारे साथ कनेक्ट होते ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी जी। गुड इवनिंग रीना जी।

लौकी और तोरई की बेल होती हैं, पेड़ नहीं होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो आंसर रहेगा यानी कि लौकी और तोरई की बेल होती है जी। ओके जी, रीना, हेलो रीना मैम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए आप कैसे हैं? गाने बिंदास सुना रही हो, ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं। और इनका कहना है कि मैम FM अभी अभी ऑन किया है क्योंकि ये थोड़ा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और अभी ये रूम पर आई हैं, कहीं घूमने गई होंगी। और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए, अरे मेरी मैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, चाय कैसे पी सकते हैं जी। और अगले मैसेज की बात करूं तो अगला मैसेज आता है हमारे साथ, ये दीपक जी कनेक्ट होते हैं MDA से। और इनका कहना है कि लौकी का ना जो बेल होती है जी, पेड़ नहीं होता है। ओके जी, आज मुझे पता चल गया, लेकिन अब निकालना है यहाँ से क्या, यानी कि कौन बनता है आज के शो के विनर, जो कि उनको मिलने वाला है 21 तारीख को है फादर्स डे, और फादर्स डे पर पापा के लिए मिलेंगे आपको टिकट जी मूवी देखने के लिए। सोच, चलिए देखते हैं कि कौन हमारे शो के आज विनर बनते, क्योंकि विनर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होने वाले हैं।

0: तो हमारे शो के आज विनर बनते हैं सतवीर सिंह. सतवीर सिंह, अगर आप रेडियो अभी सुन रहे हैं तो आज बनते हैं आज इवनिंग मस्ती शो के विनर. तो आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं टिकट्स ले जाने के लिए, जो कि फादर्स डे पर आप मूवी देखने अपने फादर्स के साथ जा सकते हैं. आप उनके साथ जा सकते हैं, मूवी का एंजॉय ले सकते हैं, जो भी मतलब, क्योंकि एक फादर्स डे पर हम ना पापा के लिए सरप्राइज रखते हैं कि कुछ ना कुछ खास तो होना चाहिए. तो आप बनते हैं आज मेरे शो के विनर सतवीर सिंह जी. तो आप आइएगा, पैरों को कष्ट दीजिएगा और यहाँ से टिकट्स लेकर जाइएगा और साथ ही साथ कुछ लेकर आइएगा, खाली हमारे हाथ मत आइएगा. चलिए श्रोताओ, अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाज़त और कल फिर से आप सभी को मैं टिकट जिताने वाली हूँ. तो आप चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे टिकट्स जीतने हैं, तो पहले कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ. तो पहले आंसर आएगा तभी आप जीत पाएंगे, विनर हो पाएंगे. फिलहाल आज शो में सतवीर सिंह कनेक्ट हो गए हैं सर, तो आप ज़रूर आइएगा स्टूडियो. कल आप यानी कि देखिए 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कभी भी आ सकते हैं, मैं स्टूडियो में ही आपको मिलूंगी क्योंकि मेरी टाइमिंग 12 से 7 होती है. तो आप 12 बजे के बीच बाद में कभी भी आइए, आप अपनी टिकट्स लेकर जाइए. चलिए जी, अब मैं यहाँ से लेती हूँ जाने की इजाज़त. कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, जहाँ करेंगे क्या जी, अरे ढेर सारी बातें करेंगे भैया, और क्या करेंगे. चलिए जी, बाय, गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, लेकिन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए. इस गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, पक्षियों के लिए पानी डालते रहिए और पानी चेंज भी करना है क्योंकि, और उनके लिए खाना दाना भी डालना है ताकि वो कुछ अपने हाँ मतलब उनको भूख लगती तो बोल नहीं सकते, प्यास लगती तो बोल नहीं सकते, हम इंसान बोल सकते, इसीलिए हमें उनका ध्यान रखना. चलिए जी बाय, कुछ कमर्शियल एड ब्रेक.
1: अपने सपनों के घर की ओर बढ़ाइए पहला कदम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सोनकपुर स्थित सहाद्री हाउसिंग स्कीम पॉकेट ए के साथ. यहाँ मिलेंगे 50 से 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट, चौड़ी सड़कें, हरियाली, खेलने की सुविधाएं और बेहतरीन कनेक्टिविटी. अपने सपनों का घर बनाने का मौका ना चुके. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 17 जून 2026. ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आज ही आवेदन करें janhit.updae.in पर जाकर या कॉल करें 6396176417 पर. यूपी रेरा पंजीकरण संख्या PRJ43981/05/2026 जनहित में जारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है.
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा.
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
4: कॉल 7500153841. DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा. इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं. आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534.
5: संबंधों में प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की. इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं. इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है.
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी. यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है. अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है. भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है. इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है. अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस.
5: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
7: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
8: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
9: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
8: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
10: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
11: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
12: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
13: पहले कनेक्शन तय हो जाए।

0: हेलो जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, ये है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त
1: प्राची।
0: यस, और प्राची आज हम पता है किस चीज की बात करने वाले हैं?
1: हाँ, किस चीज की बताइए?
0: आज हम बात करने वाले हैं गोंडा के दही बड़े और खस्ता कचौड़ी की।
1: अरे वाह, तो शुरू करते हैं जल्दी।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं गोंडा की गलियों में, जहाँ की हर सुबह उम्मीद लेकर आती है, जहाँ की परंपराएं आज भी दिलों में बसती है, जहाँ स्वाद में संस्कृति है और विकास में एक नई पहचान, जहाँ छोटे छोटे हुनर बन रहे हैं बड़े सपनों की उड़ान। ये है नया उत्तर प्रदेश, विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की उन कहानियों से जो सिर्फ विकास का नहीं बल्कि मेहनत, परंपरा, स्वाद और आत्मनिर्भरता की मिसाल है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर जिला अपने भीतर एक अलग रंग, एक अलग खुशबू और एक अलग पहचान समेटे हुए है। कहीं चिकनकारी, कहीं बनारसी साड़ी, कहीं पेड़ा, कहीं इत्र और कहीं ऐसा स्वाद जो बरसों तक रह जाए याद।
0: और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे ही जिले में जहां की सुबह की शुरुआत होती है गर्मा गर्म खुशबू से, जहां गलियों में स्वाद बसता है और जहां हर निवाला अपने पन का एहसास देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज का एहसास हमारा खास पड़ाव है गोंडा। और आज यहाँ बात होगी यहाँ की मशहूर दही बड़े और खस्ता कचौड़ी, जो अब एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के जरिए एक नई पहचान हासिल कर रहे हैं।
0: यानी जो स्वाद पहले सिर्फ गोंडा की गलियों तक सीमित था, आज वह स्वाद पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपनी खुशबू फैला रहा है, क्योंकि ये है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी, नई

0: दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त, हल्की हल्की ठंडी, सड़क के किनारे दुकान से उठती देसी घी की खुशबू और कढ़ाई में छनती हुई खस्ता कचौड़ी,
1: और सामने बड़ी सी भगौनी में रखा मुलायम दही बड़े, ऊपर से ठंडा ठंडा दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च, भुना जीरा, काला नमक।
0: अरे बस बस, सुनते मुंह में जैसे पानी ही आ गया है।
1: दोस्तों गोंडा का दही बड़ा सिर्फ एक व्यंजन ही नहीं बल्कि यहाँ की मेहमान नवाजी की पहचान है। किसी के घर मेहमान आए हो, कोई त्योहार हो, शादी हो या फिर शाम की छोटी सी दावत, दही बड़े हर खुशी का हिस्सा बन जाते हैं।
0: यह दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया बेहद ही खास होती है। उड़द की दाल को घंटों तक भिगोया जाता है, फिर उसे बारीक पीस कर फेटा जाता है ताकि बड़ा एकदम मुलायम बने।
1: और कई दुकानदार तो इसमें ड्राई फ्रूट्स की हल्की स्टफिंग भी करते हैं ताकि स्वाद में आपका रॉयल टच बना रहे।
0: और फिर बड़े को सुनहरा होने तक तला जाता है और बाद में ताजी मलाईदार दही में डुबो दिया जाता है।
1: ऊपर से मीठी इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला और अनार के दाने।
0: वाह वाह, सच कहें तो जैसे गोंडा के दही बड़े सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल जीत लेते हैं।
2: ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना ODOC आपके गोंडा जिला में दही बड़ा और कचौड़ी का चयन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
3: नमस्कार, हमें इस पता लगा कि हमारे दही बड़े का चयन गोंडा जिला के अंतर्गत और कचौड़ी का चयन हमारे गोंडा जिला के अंतर्गत ODOC योजना में चयन हुआ है। हमें बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। और इसके बारे में यही कहा जाएगा, जहां तक हमको जो जानकारी मिली है, प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जो छोटे व्यापारियों को, मझोले व्यापारियों को, जो जिला स्तर पे अच्छा खाद्य पदार्थ बनाते थे उनको सम्मान मिला है, उनको प्रोत्साहित करने की योजना है।
2: चलिए बताइए, इस योजना से आपको व इस व्यापार के लोगों को, जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा?
3: इस योजना से हमें तो बहुत लाभ होगा और हमारे साथ जो व्यापार में, इस व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं उनको ये लाभ होगा, जिससे कि ये कल्याणकारी योजना है, छोटे व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजना है। और इससे जुड़े हर जिले में जो अहम खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य आइटम, मशहूर खाद्य पदार्थ है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, सेलिंग, मतलब जो भी सरकार से हर तरीके का, हर संभव मदद मिलती है, लोगों संबंधी हो या हर तरीके का, सरकार उसमें मदद कर रही है। और छोटे व्यापारियों को जो अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको प्रोत्साहित करके फ्रंट पर ला रही है।
1: और अब बात करते हैं गोंडा की दूसरी पहचान, खस्ता कचौड़ी की।
0: दोस्तों गोंडा पर अवध संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है और अवध की रसोई हमेशा से अपने नसाफत से भरे स्वाद और मसालों के लिए मशहूर रही है।
1: यही वजह है कि यहाँ की कचौड़ी भी साधारण नहीं बल्कि बेहद खास होती है।
0: इसकी भराई में उड़द दाल, हींग, धनिया, सौंफ, काली मिर्च और कई देसी मसालों का इस्तेमाल किया जाता है
1: और फिर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार ना हो जाए।
0: गोंडा में सुबह सुबह दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं और ये एक आम बात है, कोई चाय के साथ कचौड़ी खा रहा है तो कोई दोस्तों के संग नाश्ते का आनंद ले रहा है।
1: और सबसे मजेदार बात, यहाँ कचौड़ी सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है।
0: दोस्तों गोंडा में लगभग 100 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयों में 400 से अधिक कारीगर इस कारोबार से जुड़े हैं।
1: यानी ये स्वाद सिर्फ लोगों की पसंद नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी है।
0: और अब बात उस पहल की जिसने गोंडा के इन पारंपरिक स्वादों को एक नई पहचान दी है।
1: जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना।
0: क्या बात है, इस योजना का उद्देश्य है हर जिले की खास पहचान को आगे बढ़ाना, स्थानीय हुनर को मंच देना और छोटी कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाना।
1: गोंडा की दही बड़े और खस्ता कचौड़ी को भी इसी योजना के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।
0: सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सपोर्ट और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: यानी जो

0: उस बार पहले सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, अब वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और बड़े बाजारों तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार स्थानीय कारोबार, पारंपरिक व्यंजन और छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित कर रही है
0: और इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। गाँव और कस्बों के लोग अब अपने हुनर से नई पहचान बना रहे हैं।
1: दोस्तों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती,
0: बल्कि वहाँ के लोगों, उनकी मेहनत, उनकी संस्कृति और उनके स्वाद से होती है।
1: गोंडा का दही बड़ा और खस्ता कचौड़ी इसी की पहचान का हिस्सा है। श्रोताओं,
0: एक ऐसा स्वाद जो परंपरा से जुड़ा है और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: बढ़ती लागत, साफ सफाई बनाए रखना, कम सेल्फ लाइफ और कुशल कारीगरों की कमी,
0: लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार इन चुनौतियों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं।
1: नई तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए छोटे व्यापारियों को मजबूत बनाया जा रहा है,
0: ताकि गोंडा का स्वाद सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी खास पहचान बना सके।
1: अगर अभी हमारे सामने गर्मा गर्म कचौड़ी आ जाए ना, तो मैं इंटरव्यू छोड़कर सीधा प्लेट पकड़ लूंगा।
0: और अगर साथ में दही बड़ी भी मिल जाए
1: तो भाई फिर शो खत्म होने तक कोई बात ही नहीं करेगा, सिर्फ खाने की आवाज आएंगी।
0: दोस्तों, अगर आप कभी गोंडा जाए, वहाँ की दही बड़ी और खस्ता कचौड़ी का स्वाद जरूर,
1: और अगर आपने पहले से खाया है तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया,
0: क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं, यादों का भी हिस्सा होता है।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे गोंडा का पारंपरिक स्वाद आज विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है,
0: कैसे छोटे कारोबार बड़े सपनों में बदल रहे हैं और कैसे उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी नई पहचान बना रहा है।
1: हम फिर मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और जिले की नई कहानी के साथ, नए स्वाद के साथ और नई संस्कृति और नए विकास के साथ। तब तक
0: सुनते रहिए विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। मैं आनंद और मेरे साथ
0: प्राची,
1: जल्दी आपको मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
0: बाय बाय।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: पर कहती कुछ नहीं।
1: ग्रामीण बैंक से 50,000 सरकार की तरफ से हमें लोन मिला, जो कि हमें किस्तों में चुकाना पड़ रहा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसमें हम अपनी 100 रुपए 200 रुपए की हम बचत करते हैं, और जिसमें सभी महिलाएं जो 10 महिलाएं होती है वो जमा करती है। कि सरकार ने हम महिलाओं के लिए जैसे कि जियो खुले हुए हैं, जैसे कि रूट सेट सेंटर हो गया,

0: महिलाओं को जोड़ते हैं। आर्य प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि महिलाओं जब 21 दिन की वहाँ ट्रेनिंग लेती है 10 महिलाएं, तो उनको
1: ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
2: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
1: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
4: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए।

0: हाँ, व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच, टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। आज हमारा एपिसोड बहुत खास है, अयोध्या का स्वाद, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश से, जो परंपरा और प्रगति की सुंदर संगम है।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। आज लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था की मिठास, संस्कृति की खुशबू और स्वाद का ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुँच जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, आज हम चलेंगे उस नगरी में जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि, सरयू की पावन धरती और अब स्वात की नई राजधानी।
1: सुबह का समय, सरयू के घाटों पर उगता सूरज, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और गलियों में उठती ताजी कचौड़ियों, जलेबियों और पेड़ों की खुशबू।
0: वाह, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या सिर्फ दर्शन नहीं कराती बल्कि अपने स्वाद से भी आपका स्वागत करती है।
1: और यही कारण है कि आज लाखों श्रद्धालु सिर्फ रामलला की दर्शन ही नहीं बल्कि अयोध्या के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने भी पहुंच रहे हैं।
0: भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बना चुकी है। सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल, घाट, हर क्षेत्र में विकास की एक कहानी लिखी जा रही है।
1: लेकिन विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों का नहीं होता, असली विकास तब होता है जब स्थानीय लोगों की कला, संस्कृति और स्वाद को भी नई पहचान मिले। और यही काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या की पारंपरिक खाद्य विरासत को भी नई उड़ान दी जा रही है।
1: और इसी प्रयास का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना।
2: फिलहाल मैं मौजूद हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में। यहाँ मौजूद होने का मेरे कारण है ODOC में चुने गए हमारे शहर के और इस दुकान के कुल्लड़ वाली दही जलेबी, जिसको हमारे प्रदेश में एक नई पहचान मिली है और इससे हमारे प्रदेश को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। अब जब शहर में लोग आएंगे, जब टूर से लोग आएंगे और जब वो ये कह के आएंगे कि भाई अयोध्या जाना है और हमें कुल्लड़ वाली दही जलेबी खानी है, तो अयोध्या का नाम और अयोध्या का व्यापार दोनों बढ़ेगा। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौर्य मिष्ठान भंडार से इसके ओनर।
3: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के बाद अयोध्या वासी तो भाई बोलते जो आमदनी बढ़ी है तो सही चीज है। कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो आमदनी जाहिर सी बात यहाँ लोगों को बढ़ेगी। रही बात होती ओके की, तो अयोध्या में दही जलेबी हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है
4: जी।
3: और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आते ही रहते हैं अयोध्या में, तो जो है आपके यहाँ चारी लोग जो है आपका दही जलेबी लेके जाते हैं, तो इतने भक्ति सब शायद माइंड में रहा होगा। अच्छा लगा हमको भी कि चलिए अयोध्या से इतनी पानी तो गई ऊपर तक।
4: बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह अपना धन्यवाद आप प्रकट करेंगे?
3: उनके लिए जितना कहा जाए उसमें कम ही है। अयोध्या क्या था और क्या बना दिए तो अभी देख रहे हैं, उसमें कहना ही नहीं, कोई शब्द नहीं है
4: जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार
3: जी। नमस्ते
0: दोस्तों, अगर अयोध्या के स्वाद की बात हो, खुरचन पेड़े का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, यह सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक कला है।
0: कल्पना कीजिए, बड़े से कढ़ा में घंटों तक पकता दूध धीमी आँच, धैर्य और अनुभव।
1: जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है, कढ़ाई की किनारों पर मलाई की सुनहरी परत जम जाती है। कारीगर इसे बड़ी ही सावधानी से खुरचते हैं और फिर उसी से तैयार होता है खुरचन।
0: इसके बाद उसमें देसी खांड, इलायची और पारंपरिक तकनीकी का जादू मिलाया जाता है।
1: जब ये पेड़ा तैयार होता है तो उसकी हर परत में दूध की मिठास और मेहनत की कहानी छिपी होती है।
0: कहते हैं कि एक अच्छा खुरचन पेड़ा मुंह में जाते ही घुल जाता है, लेकिन उसका स्वाद देर तक याद रहता है।
1: यानी दर्शन का प्रसाद दिल में बसता है और खुरचन पेड़ा स्वाद की याद बनकर साथ चलता है।
0: तो दोस्तों, अब बात उस जोड़ी की है जिसके बिना अयोध्या का फूड टूर अधूरा माना जाता है।
1: गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी मलाईदार दही,
0: और सबसे खास बात, ये परोसी जाती है मिट्टी के कुल्हड़ में।
1: कुल्हड़ सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। मिट्टी की सौंधी खुशबू दही के स्वाद को और बढ़ा देती है।
0: सुबह सुबह दुकानों के बाहर लगी कतारें, चाशनी में डूबी सुनहरी जलेबी और ताजी दही,
1: ऐसा लगता है जैसे स्वाद और संस्कृति एक साथ थाली में परोस दिए गए गए हैं।
0: जलेबी की तैयारी भी कम दिलचस्प नहीं है। खमीर उछे हुए घोल को गोल गोल आकार देकर घी में तला जाता है, फिर उसे मीठी चाशनी में डुबोया जाता है।
1: और जब वही जलेबी ठंडी दही के साथ मिलती है और स्वाद का ऐसा संतुलन बनता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
0: तो श्रोताओ, यही वजह है कि अयोध्या की दही जलेबी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है और फूड फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है।
1: लेकिन अयोध्या का स्वाद सिर्फ मिठाइयों तक सीमित नहीं है।
0: बिल्कुल, यहाँ की मसालेदार कचौड़ी और कुरकुरी टिकिया भी उतनी ही मशहूर है।
1: सुबह के नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और शाम को चटपटी टिकिया, यहाँ के लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है।
0: हर दुकान की अपनी विशेष रेसिपी है, अपना स्वाद और अपनी पहचान होती है।
1: दोस्तों, इन व्यंजनों की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य है कि हर जिले के विशेष व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।
1: इसके तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे दुकानदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: उन्हें आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, FSSAI मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है।
1: अब अयोध्या की स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे।
0: यही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देगा, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करेगा।
1: आज सोशल मीडिया पर हैशटैग अयोध्या फूड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
0: लोग कुल्हड़ वाली दही, जलेबी, खुरचन पेड़ा और अयोध्या के स्ट्रीट फूड की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।
1: एक समय था जब लोग अयोध्या को सिर्फ धार्मिक दृष्टि की सोच से जानते थे
0: और आज अयोध्या अपनी संस्कृति, पर्यटन और खान पान के जरिए एक नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप अयोध्या जाएं,
0: रामलला के दर्शन कीजिए,
1: सरयू आरती का आनंद लीजिए
0: और फिर जरूर चखिए खुरचन, पेड़ा, लड़वाली दही, जलेबी, कचौड़ी और टिकिया,
1: क्योंकि ये सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि अयोध्या की आत्मा का स्वाद है।
0: और जब स्थानीय परंपरा को विकास का साथ मिलता है
1: तो एक शहर की पहचान पूरे देश की शान बन जाती है।
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: दिल्ली के निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की एक नई गौरव गाथा लिखी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि विश्वास, विकास और जन कल्याण के संकल्प ने देश को तेजी से विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ नियंत्रण और जल जमाव को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ नियंत्रण आदेश 2026 जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉनसून के दौरान दिल्ली के निवासियों को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि जल जमाव वाले इलाकों में पंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और जल जमाव की आशंका वाले हर चिन्हित स्थान के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नालियों की समय पर सफाई, मोबाइल पंपिंग सिस्टम की उपलब्धता और सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे सातों दिन निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए। इस निर्णय का स्वागत करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह नीति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम, जहां कोई भी नागरिक नारकीय जीवन नहीं जिएगा झुग्गियों में। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में वो पॉलिसी तय कर दी है, जहां झुग्गी में रहने वाले मेरे बहन भाई अपने बच्चों को सुंदर मकान में रहते हुए बढ़ते हुए देखेंगे और हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए अपना योगदान देंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
2: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: दिल्ली में कल से इस महीने की 20 तारीख तक शहर भर में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन

0: पौधारोपण करने की अपील की।
1: भारत को महाशक्ति बनाने का जो दौर था प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, वो संभव होना शुरू हुआ और उसमें जो उन्होंने एक संदेश दिया स्वच्छता का, उसी संदेश पे अमल लाते हुए आज पूरी दिल्ली भर में, देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी गण, संगठन के लोग, सरकार के लोग सब मिलकर ये स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और हम यहाँ पर आए हुए हैं।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आज राजधानी के सभी 256 मंडलों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि राजधानी को स्वच्छ रखने के लिए सभी नागरिकों को कूड़ा इधर उधर न फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने नगर निगम के सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अभियान के माध्यम से सेवा ही संगठन के संदेश को दोहराते हुए नागरिकों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अभियान में विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदुरी सहित अन्य सांसद और मंत्री शामिल हुए। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज नजफगढ़ स्थित साईं बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन आज जन आंदोलन बन चुका है और जो नागरिकों को स्वच्छता और जन भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर राष्ट्र की पहचान मजबूत की है। श्री सिंह ने दिल्लीवासियों से अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान देने की अपील की।
2: स्वच्छता तो प्रधानमंत्री जी का एक है कि सुंदर भारत, साफ भारत, स्वच्छ भारत रहे, उसी के प्रयास में, उसी मार्गदर्शन में हम प्रधानमंत्री जी के आज इस मंदिर के प्रांगण में आके स्वच्छता का काम कर।
0: केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कल नई दिल्ली में खाद्य प्रबंधन के लिए स्मार्ट भंडारण प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। तकनीक आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य भंडारण प्रबंधन पद्धतियों और कार्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इस प्रणाली के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया, भारत AI मिशन, PM गतिशक्ति और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान स्थित ISI हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े 8 सदस्यों वाले एक अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के दौरान इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने, पोस्टर के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स का महिमामंडन करने और ISI समर्थित संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 5 हथियार, शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों से जुड़े पोस्टर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों के सीधे संपर्क में थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव तथा शिक्षा निदेशक शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि बैठक में दिल्ली के सभी स्कूलों का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों और दिशा निर्देशों का

0: पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। श्री संधू ने शिक्षा विभाग के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। यह दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान सम्मान और पुनर्स्थापन। यह विषय चारागाहों के आर्थिक पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की और संकेत करता है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: लैंड रेस्टोरेशन इतना इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों के जीवन में नई आशा, समृद्धि और जीवन की नई संभावनाएं लेकर के आता है और इसलिए आज इस समय की आवश्यकता है कि हम विकास और इन चीजों को, जैव विविधता के संरक्षण को, पशुधन आधारित आजीविकाओं को, जल चक्र के विनियमन को, कार्बन के संचयन को और जलवायु में फ्लेक्सीबिलिटी को लाकर हम एक भूमिका को निभाएं।
0: राजधानी में आज धूप रही और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा धूप रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक पेड़ मां के नाम दिल्ली मेगा ट्री प्लांटेशन अभियान 2026 की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान तेज, सफाई अभियान में कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े अंतर्राज्यीय टेरर मॉड्यूल के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद। एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी, आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। और आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
1: तुमने बुलाया नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
0: अरे यार, एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम क्यों हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ, तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
0: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करी है भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
1: तभी बार बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
0: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ, कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल, कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के?
1: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा
0: है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
1: युवा शायर
0: उनको हमने बुलाया है। सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
2: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
0: अच्छा, ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ, ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
0: वाओ, वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है, क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
2: थोड़ा नर्वसनेस
0: हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके, अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
2: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, हाँ, उसमें मिले थे हम।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
2: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
2: एक दो बार ट्राई करी थी।
0: अच्छा,
2: मैंने।
0: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
2: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
0: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
2: मैं मुरादाबाद में एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमकपुल के पास है।
0: अच्छा भैया, ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
2: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
0: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
2: आगे मेरा MBA करने का प्लान है।
0: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
2: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
1: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
0: यार, मैं वही पूछ रहा, मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक, एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए भाई।
1: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
0: नहीं भैया, मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
2: नहीं,
0: फिर
2: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
0: अच्छा,
2: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
0: ओ वाओ, अच्छा ऐसा भी है,
2: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
0: अच्छा
2: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
0: ऑलराइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
1: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार सच दिल तोड़ोगे?
0: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
2: ओम अग्रवाल।
0: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
2: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
0: अच्छा तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
2: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखो, क्या ही लिखूं, वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
0: ऑलराइट, मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है, उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद, है ना?
2: कोई शब्द नहीं है।
0: नाइस, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं, इनका क्या नाम है?
2: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ हैं?
2: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर तो।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
2: दोस्ती में
0: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त और टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती है।
1: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरे एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है।
0: अच्छा।
1: राहुल जैन करके।
0: अरे वाह।
1: तो मैं 9th क्लास में था उस समय, और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी.
3: Alright.
1: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, हाँ भी तू चल तुझे तो कल देख लूंगा. मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों. तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली. तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं. ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स. तो वो एक कार्ड लेके आया. तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था. जैसे अभी गुप्ता जी ने
3: कहा, आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कि कुछ और ही मामला हो रहा है. तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम. क्यों, आपको क्या लगता है?
2: देखिए जैसे मैंने कहा था कि प्रोस्पेक्टिव बदल जाता
3: है. एब्सोल्युटली
2: इंसान सब अच्छे होते हैं.
3: करेक्ट.
2: तो ढूंढना होता है बस.
3: अच्छा कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है.
2: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, बस सीखा हूं.
3: अरे वाह,
2: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की.
3: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप.
2: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों की वैल्यू नहीं दी थी.
3: ओके.
2: तो मैंने उससे सीखा.
3: होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म. वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो.
2: हाँ कह सकते हैं.
3: और अच्छा ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए. आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली एंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होंगी यार आज की शाम. सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए. वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अकील अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अकील जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं।
1: हाँ, मजा तो आ रहा है। और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं।
1: बिल्कुल सही, मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है ना, इसे टकराना। तुम
0: ग्रीटिंग ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की?
1: दोनों बनिया सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं? एक मेरी भी दोस्त है, वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं मैं हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसी ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं
0: ये। हमेशा अपनी शायरी में ना मेरी को चप्पले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह।
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए,
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए,
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाएं यार, देखो किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ,
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो,
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो,
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया, ट्रू, क्या बात है, शानदार। शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
2: खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
0: अरे
2: तो लिखना आ गया।
0: आपके फेवरेट शायर कोई जिनको आप याद, यू नो आज भी?
2: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था,
0: हाँ।
2: एक मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था,
0: हाँ।
2: उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, पॉडकास्ट नहीं था, रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
0: वाह,
2: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
0: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बात है
2: जी,
0: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी कि फिर आपको मजा आ गया पढ़ने में, बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना होना तब तक आप अपनी 100% नहीं दे पाओगे
2: जी।
0: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा अब आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
2: मैं सोचता हूँ मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी।
0: अच्छा,
2: वो एंड में ही लिखा जाएगा, मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को। तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के, कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अभी आप जो आपकी बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचें, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया, तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
2: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
2: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा अभी, लिखा है शुरू शुरू में, मेरे को लगता है वो वहाँ थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में। तो तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा। काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
2: सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।
1: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
0: यार। मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा। पर अच्छा यार, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
2: देखो वही कहता ना, जब कोई चला जाता है उसकी इमेज ज्यादा होती है तो समझ में आता है कि हाँ यार।
0: लेकिन यार तो सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना। फिर तो
2: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: ओके, मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
1: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत तो जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था उसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ।
0: नहीं यार, ऐसा तो नहीं होगा। खैर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुनाया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन, है ना। प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से अखिल भाई आपको बताऊंगा, आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे।
1: मतलब मैं क्या कोई बहुत पुराना मॉडल हूं?
0: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत, हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल हैं, नो डाउट यार। सबको पता है। तो मतलब आजकल की जिनजी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है।
1: वो
0: आजकल व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उसपे दो मिनट में वो वाली आ जाती है जो तुम्हें इंप्रेस्ट करेगी, दो मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है। एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
2: अट्रैक्शन कह सकते हो, पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज़ें।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या अभी भी है? जिंदा
2: जिंदा है, तभी तो हम जिंदा
0: है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार एक, और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
2: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
0: ठीक है,
2: उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को देगी अपने, उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह।
2: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
0: वाह।
2: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुंदर सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया।
1: शुक्रिया
0: ओम जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। गाइस आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: से।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
3: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
4: कॉल 8826213131।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
7: हेलो जी, कैसे हाल चाल है आप सब? मुझे लगता है अट्रैक्शन इज नॉट अ लव यार।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आपने अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना, इसके बाद स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेर व शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज़ में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं अखिल जी, आपको मज़ा आ रहा है यानी ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है और मैं तो यही कहूँगा मज़े मज़े में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज़्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया।

0: मजा आ गया जी। अखिल जी की शेरो शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए। जी ओम जी।
1: तो गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह,
1: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले
0: तो
1: उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं।
2: ठीक, ऐसी तस्वीर कैसी थी ओम जी, कुछ तो बताएं, तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ।
0: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता हो तो वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
2: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है।
0: आजकल मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना, होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी वहां से पता लगती है, इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पे ही भरोसा करें।
2: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं shaadi.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते हैं ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूं।
0: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आप जैसे .com पे बिलीव करता हूँ, मैं shaadi.com पे बिलीव नहीं करता अखिल जी, सच बात तो यह है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो ये .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊँ तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहाँ जिसका काम बने वो बेस्ट है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
2: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
0: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
1: आगे का शेर भी है वैसे।
0: हाँ जी प्लीज बताएं।
1: पढ़ना चाहूंगा कि
0: श्योर,
1: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: वाह,
1: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: क्या बात है,
1: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं।
0: अरे
2: क्या बात है,
1: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार हैं।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं।
2: वाह
1: ओम, क्या फिर नहीं देखा, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं।
2: ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
0: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है।
2: और
0: मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हो ही जाएंगे हम तो यार।
2: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं,
0: डेफिनेटली,
2: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी हैं, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में और जैसे ही वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
1: नहीं ऐसा जनरली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी, तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फ़ोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता।
0: दैट्स वेरी नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज़ से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है,
1: निकल जाता है,
0: वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज़ करनी है, करनी है ना, वो वाली चीज़ है। बट वो ये कि जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से, तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
2: मैं तो निकाल ही लेता हूं,
0: बस वही वाली बात है, जिस चीज़ से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर व शायरी होती है, जब आपको पहली पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा कि तुम्हारे बाल सुंदर हैं, तुम्हारे गाल सुंदर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ यार, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ आप नहीं चाहते, तो कुछ अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो, सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो,
2: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंडिया में टिप्स ले रहे हैं, टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना
0: है। अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई,
1: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
1: मिल गया है वैसे।
0: अच्छा
2: ढूंढ लिया,
1: मिल भी गया,
0: क्या बात है, मेरा लग अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया,
1: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
0: हाँ जी,
1: तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, यार ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
0: वाह,
1: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही।
0: क्या बात है।
1: मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं लकीरें देखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है। वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पर, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। फिर वो अपने मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई। देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
0: अरे वाह।
1: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही। आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, सच में हुआ था।
0: अच्छा।
1: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही। और एक हम थॉट सोचते हैं कि यार ब्रेकअप हो गया तो उससे कहते भी हैं, तो उस बात पर गुस्सा हो जाती है। तो उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो उम, फुरकत की बात मत किया करो उम, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही। चुप करा देती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये तो है, ये
0: एक
2: तो
0: पल में प्यार हो रहा है, वहीं दूसरे पल में शिकायतें भी हो
2: रही
0: है।
2: अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बढ़
0: ये बात तो आपने
2: तो ओम जी जो हैं बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं। इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया, मुझे उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत। मैंने फिल्म देखी थी, बहुत ही कमाल की।
2: आप मुझे पता चला आप ये वर्ड कहाँ से पकड़ लेते
0: हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली पहली बार प्यार हुआ तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उससे रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं। हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में, ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं, लिख के इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं, और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं, लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं, ये मजे की बात है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है,
0: फिल्टर है ये,
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज।
0: अच्छा ओके, बल कोई बात नहीं, अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है।
2: ये आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना, आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते राह चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे।
0: नहीं भाई नगमा नहीं ढूंढना, मुझे तरन्नुम ढूंढना है।
3: अरे
0: ढूंढनी है, सॉरी गड़बड़ हो गया है, सॉरी। बिल्कुल कोई बात नहीं, इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना। मेरा मेन मोटिव यही होता है, मेरा मेन टिप होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराएं और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें। बैक टू पॉइंट, अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं। जी ओम जी,
3: अरे आपको कभी ऐसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल, मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है, हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है, और इसके लिए मैं जितना सोचू तो जितना लिखू वो कम है।
3: इससे तो होनी भी चाहिए, जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है, उसकी खुशी होती है।
0: करेक्ट।
3: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपने होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था, तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो, उस घड़ी को संभाल के रखूंगा। तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक, रुक जाता है वक्त, रुक जाता है वक्त,
2: ले लेंगे लाइन,
3: हाँ। रुक जाता है वक्त जब भी तुम्हें देखा है मैंने, आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने।
0: वाह,
3: यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मोहब्बत का वादा, यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत, मांग भर के तो वक्त भी रोक दिया है मैंने।
2: क्या बात है,
3: कभी तो लगता है मैं ही कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूँ सामने, कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूँ मैं, लगता है बहुत अमीर हो चुका हूँ मैं, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद, ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने।
0: वाह,
3: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने।
0: बहुत ही
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
0: हेलो जी, कैसे हाल चाल हैं आप? सुन रहे हैं
8: इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार

0: रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना

0: समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों एनआरआई पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एनआरआई विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
1: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ. कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ओम जी आ जाते हैं हमारे तो अगर उन ओम जी को कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर उनकी शायरी पढ़नी चाहे, देखनी चाहे, तो आप कैसे कांटेक्ट किया जाए उसमें?
3: मेरा एक पेज है दिल ए स्याही नाम से।
2: दिल है
3: दिल ए स्याही।
2: दिल ए स्याही तो उस पेज को
3: फॉलो कर सकते हैं।
2: फॉलो कर सकते हैं तो आपको तो आनंद जी तो अभी फॉलो कर लेंगे।
4: नहीं, हमने कर रखा है तभी वो यहाँ बैठे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते। सच्चाई यही है। क्यों ओम जी?
3: जी जी
4: हम एक दूसरे की एक्टिविटी देखते रहते हैं। बहुत जरूरी, उससे पता चलता रहता है कि कौन कितना क्रिएटिव है।
2: एक दिखे नगमे जो है पकड़े आ रहे हैं।
4: करेक्ट कह सकते हैं। आप नहीं डालते हो ना, इसलिए आपका नगमा पीछे रखा हुआ है। आप भी पोस्ट करना शुरू करो। अच्छा भैया, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो जैसे होता है ना कि कई बार हर इंसान को हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं होता है ना। आप जो शेर व शायरी कर रहे हो वो आपको पसंद है, वो आपका क्राइटेरिया है, क्योंकि आप उस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पसंद नहीं होती, लेकिन वो फिर भी वाह वाह करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है?
3: ऐसा नहीं है, इन लोगों का भी दिल टूटा है।
4: अच्छा,
2: जो आपके साथ आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ ही चलते हैं
4: उनका भी दिल
2: टूटा है। उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि कभी जैसे ओम ने कुछ लिखा है या कुछ भी कोई बात तो कहीं क्लिक करता है आपके मन में या माइंड में? यार
4: थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो यार अखिल भाई, मैं पूछना चाहूंगा इनके बारे में। थोड़ा सा आप बोलो कुछ।
5: मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं ओम को
4: अंतरिक्ष
5: जी
4: जो आसमान में जाते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट भी जाते हैं शायद वहाँ पे अंतरिक्ष।
2: आज आप पूरा यूनिवर्स साथ में।
4: अरे वाह, मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर। हेलो, कैसे हो आप?
5: मैं
4: पूरे अंतरिक्ष को देख पा रहा हूँ आपके अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वेरी नाइस। हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आपको कैसे लग रहा है ये बताइए यहाँ के।
5: मेरे लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। मैंने मुरादाबाद में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ के ऐसे एक पॉडकास्ट सेटअप में बातें कर रहा हूँ।
4: क्या बात है, अरे वाह।
5: तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग है।
4: अमेजिंग, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। ये भी अच्छी फीलिंग है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है ना, ये वाली बात है।
5: बोलने में तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ।
4: अरे वाह, क्या बात है।
5: मैंने बहुत सारे शोज भी करे गाने के, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक स्टूडियो में बैठ के फर्स्ट टाइम है, बट ऑडियंस के सामने नहीं है, तो मैं इतना घबराता नहीं हूँ बोलने से।
4: नहीं नहीं यार, क्या बात है। तो आप क्या अच्छा गाते हैं अखिल भैया? आप फिर तो जब गाने की, हम लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, भाई कुछ तो पकड़ के सुनाओ, कुछ तो बढ़िया गुनगुनाओ। मतलब क्या चीज है जो आप, मतलब आप पहले से गाते हैं या मतलब?
5: नहीं नहीं, मेरे को गाने का शौक बचपन से है। मेरे फादर बहुत अच्छा गाते थे।
4: ओ वाओ।
5: और वो उन्होंने MTV में एक बारी शोज में भी गए हुए हैं, तो वो जो उनके गाने का तरीका वो शायद मेरे अंदर इनहेरिट लिया है।
4: वेरी नाइस यार,
5: तो मैंने उनको देख के ही सीखा है जो सीखा है।
4: आप भी मुरादाबाद से हो?
5: जी मैं।
4: आप कहाँ से हैं भैया?
5: मैं सिविल लाइन से।
4: सिविल लाइन मुरादाबाद। अच्छा, अभी प्रोफेशनली क्या चल रहा है? स्टडी कम्प्लीट हो गई?
5: जी मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो गई है BCA से।
4: लोगों की शादियों को अच्छे से मैनेज करना या फिर सारी इवेंट मैनेजमेंट?
5: सारी ही इवेंट मैनेजमेंट, मोस्टली शादियां। मेरे को शादियां करवाना ज्यादा अच्छा लगता है।
4: क्या बात है, तो अपनी हो गई अभी या नहीं?
5: नहीं नहीं, मेरी कहां।
4: अरे वाह, मतलब दूसरों की शादियों का बैंड बजाओ।
2: दोनों
4: थोड़ा संभाल के रखो।
2: दोनों दोस्तों ने बिल्कुल एकदम सही दोस्ती पकड़ी है
4: दूसरे यार, मतलब वेरी नाइस। और साथ में कब से हो? यू नो
5: हम लोग स्कूल से साथ है।
4: ऑल राइट, अच्छा। हम लोग अभी मनमुटाव नहीं हुआ आप दोनों का भाई?
5: नहीं, लड़ाइयां हुई है, बहुत लड़ाइयां हुई है।
4: ओके,
5: बात भी नहीं हुई है बीच में।
4: तो फिर कौन एक दूसरे को यू नो सबसे पहले कन्विंस?
2: कार्ड देता था कार्ड।
4: नहीं, कन्विंस भी होता है ना कि भाई मैं ही चला जाता हूँ, चल तू मत बोल भाई।
5: हमारा ना एक्चुअली 4-5 जनों का ग्रुप है।
4: ऑलराइट, वो देखे हैं मैंने 4-5 जने।
5: हाँ जी,
4: हाँ हाँ, मैं देखा हूँ बिल्कुल।
5: तो हम लोगों का ना क्या होता है, अगर आप मान लो किसी एक दो के बीच में लड़ाई हो गई, तो 2-3 दिन नहीं मिलेंगे, बट हमारा ना एक शाम में मिलने का स्पॉट है और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब मान लीजिए मेरी और इसकी लड़ाई हो गई उनकी और हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो उस ग्रुप पे मैसेज आएगा कि भाई हमें यहाँ मिलना है, इस टाइम पे सारे आ जाओ। अब उस टाइम पे ये भी आएगा, मैं भी आऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग अगर हमारी लड़ाई हो रखी है तो हम उस ग्रुप से मिलने नहीं जाएंगे।
4: ओके,
5: मिलने आ जाएंगे। अब हम वहां मिले तो ऐसा लगेगा कि जैसे कभी हमारी लड़ाई ही नहीं हुई। okay. उसकी बात ही नहीं होगी, जैसे हम हमेशा मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। तो कभी हमें एक दूसरे को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग समझ जाते कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे वो बंदा उस इमोशन में था, मैं इस इमोशन में था, वो समझ गए। तभी शायद हमारी दोस्ती इतनी करी कि हम एक दूसरे को बिना बोले भी समझ
4: जाते। That's true, yeah.
2: भाई साहब, अभी जो आजकल हम जजेस को ढूंढ रहे हैं या जितने भी हम वकीलों को ढूंढ रहे हैं ना जो केस सॉल्व करवा दें, ऐसे लोगों की जरूरत है जो मनी मन में केस सॉल्व कर दे, कहानी खत्म भाई। तू भी मैटर सॉल्व मिले।
4: नहीं मतलब ये बात तो यार बहुत अच्छी बोली, और मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 2026 में ऐसे स्पेशल दोस्त बहुत कम हैं जो एक दूसरे की यू नो बॉन्ड को इतना संभाल के और समझ के रख रहे हैं यू नो। और आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्योंकि पहली बात तो ग्रुप्स ही नहीं बचे हैं, सिर्फ आजकल वो खाने खिलाने वाले ग्रुप्स बने हुए हैं। शाम को मिलते हैं, मैंने तेरा खाया, तूने मेरा खाया, उसके बाद टाटा बाय बाय,
2: कौन मैं कौन,
4: खत्म, वो वाला सीन है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो यू नो इस चीज को बहुत संभाल के रखते हैं।
2: अरे ये अभी मैं मतलब ये बात से मुझे याद आया कि इसमें भी एक वो होता है, वो रहता है लॉजिक कि जैसे खाना खा लिया तो हाथ सभी के जाएंगे पर्स के पास,
4: पैसे मगर, किसी की नहीं
2: मगर पैसे किसके पहले निकल रहे हैं, वो एक दूसरे को देखते रहते हैं यार।
5: सबके साथ
2: पिछली बार तो मैंने खर्च किया था, इस बार तू जरा पहले निकाल।
4: करेक्ट,
2: ये अच्छा भी इशारों तो में समझ जाते हैं आप सब आपस में। तो ये सबसे मेन बात है। कुछ और समझो ना समझो, ये चीजें आपस में समझनी चाहिए।
4: अंतरिक्ष भाई से थोड़ी सी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा दोस्ती की बातचीत चलिए। तो एक बहुत ही अच्छा सा गाना लगा रहा हूँ फ्रेंडशिप के ऊपर, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। अगर आपको कोई पुराना दोस्त है जो आपको याद नहीं कर रहा है, तो आज आप उसे याद करो, व्हाट्सएप करो या कॉल करो, किसी भी तरीके से उस तक पहुंच जाओ, हो सकता है वो भी आपका वेट कर रहा हो। क्यों क्यों अखिल भाई, कई बार होता है ना सामने वाला हमारा वेट कर रहा होता है और हम इस चक्कर में बैठे होते हैं कि वो हमें फोन करे, और इसी चक्कर में क्लैशेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यार आप ही शुरुआत कर लो, क्या दिक्कत है। और फिलहाल ये आपके दोस्त के लिए मेरी तरफ से।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: कुमार जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: तो 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुद्र की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: हरियाली से सजे हर गांव शहर,
4: प्रकृति से खुशियों की लहर।
5: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: 長官。
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
1: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद
2: कॉल 8826213131

0: क्या हुआ भैया, परेशान क्यों?
1: अरे तुम्हारी भाभी की डिलीवरी करवानी है, कहाँ जाऊँ?
2: अरे तो परेशान क्यों होना है ना, धानिया नर्सिंग होम, यहाँ मिलेंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना अग्रवाल अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ। बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन ऑपरेशन या हो बांझपन का इलाज, सब कुछ मिलेगा एक ही छत के नीचे, और साथ ही आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। धानिया नर्सिंग होम, मानसरोवर कॉलोनी, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 9012069764।

रखती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।